मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। 5:57 होने को ही हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ इस मातृभूमि वंदना से।

समूह स्वर में सुमित्रानंदन पंत की ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आपने सुनी। वंदना में लीजिए अब सुनिए विदुषी किशोरी अमोनकर के स्वर में मीराबाई का भक्तिपद।

ये भजन अभी आपने सुना पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में। आइए अब सुने हरिओम शरण और साथियों के स्वर में हरिओम शरण का लिखा ये भजन।

0: सुरेंद्र कोहली के गाए इस भजन के साथ ही हमारी आज की वंदना अब संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आइए अब सुनें चिंतन। आलेख डॉक्टर वंदना काले का है।
1: मनुष्य अपनी आत्मिक शांति, सुख और मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक कर्मकांडों का पालन करता है, परंतु इनमें से दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिससे सिर्फ दाता ही नहीं वरन दान पाने वाला व्यक्ति भी सुख, प्रसन्नता और संतोष का अनुभव करता है। यही कारण है कि आदिकाल से ही हमारे ऋषियों ने दान को अत्यधिक महत्व दिया है। हम उसी देश के नागरिक हैं जिस देश में एक कबूतर की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपने जीवित शरीर को गिद्ध के सामने परोस दिया था। जन सामान्य की असुरों से रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थीं। दानवीर कर्ण ने जीते जी अपने कवच कुंडल को दान में दे दिया था। राजा ययाति को उनके ही पुत्र ने अपना यौवन तक दान कर दिया था। अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा बलि ने अपना संपूर्ण शरीर तक दान कर दिया था। हमारे पुराणों और इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जो दान को सर्वोत्तम पुण्य कर्म के रूप में वर्णित करते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, धनदान, विद्यादान, अभयदान, कन्यादान, क्षमादान तो सामान्य दान हैं, परंतु रक्तदान, नेत्रदान और शरीरदान को हम महादान कह सकते हैं। इस तरह के दान करके हम अपने ईश्वरीय गुणों का परिचय देते हैं। जीवन सिर्फ ईश्वर ही देते हैं, ये एक अलग बात है, किंतु अंगदान और देहदान करके किसी को जीवन देना भी ईश्वरीय कार्य ही होता है। एक अनुसंधान से ये पता लगाया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की प्राकृतिक मौत के बाद उसके शरीर के अंगों से 50 व्यक्तियों की मदद की जा सकती है। वहीं शरीर दान से चिकित्सा के विकास में पूरी मानव जाति लाभान्वित हो सकती है। एक बार एक गुरु के आश्रम से 3 शिष्य शिक्षा दीक्षा लेकर जाने लगे। जाने के पूर्व वे तीनों गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। तब गुरु जी ने कहा, जाओ, किसी भी वृक्ष के कोई भी 2 पत्ते जो किसी काम के न हो, अर्थात बेकार हो, लेकर आओ। गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य बेकार पत्ते ढूंढने के लिए निकल पड़े। पास के ही गांव में उन्हें बहुत से वृक्ष दिखे जहां बहुत सारे पत्ते भी गिरे पड़े थे। इन पत्तों को गांव की एक महिला एकत्र कर रही थी। शिष्यों ने 2-2 पत्ते उठा लिए। महिला ने कहा, इन्हें मत लो, ये मेरा ईंधन है। शिष्य आगे बढ़ गए। फिर से उन्हें एक गांव मिला। वहां भी बहुत से वृक्ष थे और नीचे बहुत से सड़े

0: निकले पत्ते भी थे। शिष्यों ने जैसे ही उनमें से दो दो पत्ते उठाए, एक किसान आया और बोला, इन पत्तों से मैं खाद बनाता हूँ, इन्हें मत उठाइए। शिष्य अभी भी इस कोशिश में थे कि उन्हें बेकार पत्ते मिल ही जाएंगे। अब उन्हें एक जंगल में अलग अलग प्रकार के पत्तों के बहुत से ढेर दिखाई पड़े। खुशी के मारे शिष्यों ने उनमें से दो दो पत्ते उठा लिए। तभी वहां एक व्यक्ति आया और कहा, ये सारे पत्ते मैंने जड़ी बूटियों और औषधियों के लिए इकट्ठे किए हैं, इन्हें मत उठाइए। दिन ढल रहा था, शिष्य बहुत थक गए थे, प्यास के मारे बुरा हाल था। पानी पीने नदी किनारे गए। जैसे ही पानी पीकर वे तृप्त हुए, पेड़ की एक छोटी सी डाली उन्हें पानी में बहते हुए दिखाई दी। शिष्य प्रसन्न हुए कि अब उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने डाली उठा ली, पर यह क्या, उसकी हरेक पत्तियों पर बहुत सी चींटियां थीं जो उस डाली के सहारे तैर रही थीं। शिष्यों ने डाली वहीं छोड़ दी और हताश निराश गुरु के आश्रम खाली हाथ ही लौट आए। गुरु के चरणों में क्षमा याचना की। गुरु ने उन्हें उठाया और समझाया कि पुत्रों, मुझे पता है कि बेकार पत्ते मिलना कठिन है, परंतु मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि पेड़ से अलग होकर पत्ते भी जब जीव जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो क्या हम मनुष्य होकर हमारी आत्मा निकल जाने के बाद अपना शरीर जगत कल्याणार्थ नहीं दे सकते। शिष्यों को बात समझ में आ गई और अपनी मृत्यु के बाद देहदान और अंगदान का संकल्प लेकर निकल पड़े समाज सेवा के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मरने के बाद हमारा शरीर या तो जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा, किसी भी हाल में वो हमारे या परिजनों के काम नहीं आता। तो जीते जी देहदान का संकल्प करके मौत के समय शांति का अनुभव क्यों न करें, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: चिंतन अभी आपने सुना, आलेख डॉक्टर वंदना काले का था। ये आकाशवाणी रायपुर है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गान।

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुँचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे। आकाशवाणी के संगीत में प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। ये है आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों का प्रसारण। हमारा पशुधन में आज पशुओं से मनुष्य में होने वाली बीमारियां, इस विषय पर जानकारी दी है डॉक्टर संजीव राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार राय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला रायपुर में पशु चिकित्सा सहायक शल्यक के रूप में पदस्थ हूं। मैं आप लोगों को से मनुष्यों में होने वाली बीमारियों के बारे में बात करना चाहता हूं। कोविड के बाद से ही जूनोटिक रोग ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। आज यह एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है और इस तथ्य से ही समझा जा सकता है कि हर 10 संक्रामक रोगों में से 6 की प्रकृति पशुजन्य है और हर 4 उभरते नए रोगों में 3 जूनोटिक प्रकृति के रोग हैं। और ये सब बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा, पर्यटन, ये कारक इस खतरे को और बढ़ाए हैं। कटते वन, वन्य जीवों का अवैध व्यापार, पर्यावरण क्षति से भी नए उभरते रोगों के प्रसार की संभावना बढ़ी है। फिलहाल 300 से भी ऐसे ज़्यादा रोग हैं जो जूनोटिक रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है और इस वजह से कुछ ऐसे भी रोग हैं जो यहाँ पर पहले से ही पाए जाते थे, जो कि यहाँ के लिए एंडेमिक हैं, जैसे ब्रुसेला, रेबीज, लेप्टोस्पायरा, और कुछ रोग जो उभरते हुए रोग हैं जो बाहर से भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चलते, व्यापार के चलते आ सकते हैं। लेकिन किसानों के लिए ये बताना उचित होगा कि कई ऐसे भी रोग हैं जिनके बारे में आपने पहले से ही आप जानते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स है, बर्ड फ्लू है, मैड काउ डिजीज है। ये भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन ये इसका बराबर शासन जो है उसको सर्विलेंस करता है। ब्रुसेलोसिस जो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है रोग, क्योंकि किसान इसको गर्भपात जानवरों में जो होता है उससे सामना करते हैं। पक्षियों से भी होने वाले रोग हैं सिट्टाकोसिस, और कच्चे दूध से फैल सकता है जो रोग, वो क्यू फीवर है। इकाइनोकोकोसिस, रेबीज,

0: लेप्टोस्पायरा, ये सब जो है आज काफी नाम सुने जाते हैं जूनोटिक रोग के बारे में। किसानों से बस ये अनुरोध है कि किसान भाई जो पशुओं के संपर्क में आते हैं तो कुछ अपने आदतों व्यवहार में परिवर्तन लाके इससे बच सकते हैं। हमेशा जब भी वो पशुओं के संपर्क में आते हैं और उसके बाद में जब घर में आते हैं तो अपने हाइजीन पर ध्यान दें, अपने साफ सफाई पर ध्यान दें, पशुओं का टीकाकरण समय से करवाएं, पशुओं में समय समय पे कृमिनाशक दवाई का इस्तेमाल करें, जो ऊपर में जो टिक्स हैं, जू हैं, किलनी हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल करें, और जो पेट कृमि है उसके लिए समय समय पे साल में दो बार तीन बार दवाओं का इस्तेमाल करें, और अच्छे तरीके से जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस है उसका इस्तेमाल पालन करें तो इन सब खतरों से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो जो पशुओं पशु खाद्य हैं उसका उपयोग करते समय अच्छे से पका कर खाएं उसको। अधकच्चा खाने से भी कुछ कई ऐसे रोग हैं जो कि मांस से भी इंसानों में हो जाते हैं और ये भी जूनोटिक रोग की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि सिस्टिसर्कोसिस है। ये अक्सर बकरी के मांस या भेड़ के मांस से इंसानों में हो सकता है। और एक अध्ययन में ये भी पाया गया है कि 50% से ज़्यादा जो मिर्गी के रोग हैं वो विकासशील देश जैसे भारत हैं और आसपास के जो नेपाल बांग्लादेश, इसमें 50% से ज़्यादा के ज़्यादा जो रोग हैं उसका कारण सिस्टिसर्कोसिस है, जो कि बकरी भेड़ में होने वाले एक परजीवी रोग की वजह से होता है। तो अगर हम ध्यान दें, अगर साफ सफाई का ध्यान दें तो हम इस तरीके के रोगों से बच सकते हैं। राम राम।
1: हमारा पशुधन में अभी पशुओं से मनुष्यों में होने वाली बीमारियां, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजीव राय। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको बताएं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड्स के बीच हैंडिंगले लीड्स में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, शाम 7 से रात 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें 7:30 पर आप सुनेंगे डिजिटल युग में योग का महत्व। इस विषय पर मेट्स यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राघव कुमार वर्मा से रमा शंकर की बातचीत। अपने पत्रों के उत्तर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके पत्र में सुबह 8:30 पर। सुबह 9 गांधी चर्चा में सुनिएगा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे संतोष दिवाकर। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा जगजीत सिंह को। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10 सुनिएगा पंडित देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग जौनपुरी। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात 10:45 पर आप सुनेंगे शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग मांड और राग हंस ध्वनि। दिन में 11:05 पर होगा फिल्म छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ नाम की भीख। ये नाटक सुनिएगा दोपहर 1:30 पर। लेखक श्री पृथ्वीनाथ शर्मा और निर्देशक होंगे श्री चिरंजीत। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में चर्चा होगी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस। इस विषय पर और सुनिएगा क्रम

पत्र मिला और यादें। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 12 बजे और शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2 बजे और 2:30 पर भी। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे।

0: पर्वस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्ताराष्ट्रियसहभागित्वविनिर्माणे विशेषतः वर्धमानपरस्परसम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्त्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रियसहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति। विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुट्बाल् क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिकक्रीडायां फ्रांसदेशेन सेनेगलदेशं 3-1 इति अङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा।

0: मौसम विभाग ने आज हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार। रायपुर की सुरीली परिचय धुन के साथ कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और सफल होने के लिए अवसर का इंतजार करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी को जीवन भर कोई अवसर नहीं मिल पाता। यकीनन सभी को मौका मिलता है, पर दिक्कत ये है कि अवसर अक्सर दबे पांव ही आता है और उसे पहले पहल पहचानना काफी कठिन होता है। जीवन के दिए मौके या अवसर सीप के मोती जैसे होते हैं, उन्हें फिसलते देर नहीं लगती। तो जब भी सफल होने का मौका हाथ आए उसे जाने न दें और याद रखिएगा कि मेहनत और कोशिशें भी उतनी ही जरूरी हैं। तो निभाते रहिए दुनिया के रंगमंच पर अपना किरदार ताकि आपकी मौजूदगी की गूंज बनी रहे कुछ इस तरह से।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, हमारी धरती एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि यहाँ जल है, हरियाली है और जीवन है। पर विकास और विस्तार के विभिन्न चरणों के चलते धरती की ये जीवंतता धीरे धीरे कम होने लगी, और कम होने लगी इसकी उर्वरता भी। जी हाँ, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और मानवीय लापरवाही से ये धरती बंजर होने लगी। हर साल सूखा पड़ने लगा और बढ़ने लगे मरुस्थल भी। चिंता बहुत स्वाभाविक थी और जन जागरूकता बहुत जरूरी। तो हर साल 17 जून को, यानी आज के दिन, मनाया जाने लगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक अभियान है, जिसका उद्देश्य भूमि क्षरण और सूखे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ भूमि की रक्षा और बहाली के लिए कार्रवाई को संगठित करना है। सन 1992 के रियो अर्थ समिट के दौरान जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के साथ साथ मरुस्थलीकरण को सतत विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना गया, और सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसम, यानी UNCCD की स्थापना की गई, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 17 जून को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य घटती उपजाऊ भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। साल 2026 के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम है चारागाह, पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें, यानी रेंजलैंड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रीस्टोर। इस वर्ष केन्या इस

वैश्विक आयोजन की मेजबानी कर रहा है। इस देश का लगभग 80% भाग चारागाहों से ढका हुआ है और लाखों लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन ही है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में 17 से 28 अगस्त तक होने वाले एक आयोजन में शुष्क भूमि समुदायों की वास्तविकताओं और जमीनी स्तर पर आकार ले रहे समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं अफ्रीकी महाद्वीप वैश्विक सम्मेलन में, जिसका नाम है भूमि का पुनर्स्थापन, आशा का पुनर्स्थापन की मेजबानी भी कर रहा है। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए आयोजित ये सभी महत्वपूर्ण वैश्विक मंच विश्व भर में चारागाह भूमि के पुनर्स्थापन, सतत भूमि प्रबंधन और संरक्षण के लिए समाधानों को बढ़ावा देने के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं। बस वर्षा जल को भूमिगत करने के लिए हर भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करें। हरियाली बढ़ाने के लिए पौधे रोपें, उनकी देखभाल कर उन्हें मजबूत वृक्ष बनने दें और प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें, ताकि हमारी धरती हरे भरी बनी रहे, फले फूले और हरियाती रहे।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर
1: वर्तमान समय वेब में सामान की खरीद बिक्री करने के नाम पर आम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। इसमें हर स्मार्ट आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के नाम पर अपने थनथन कहीं आने जगह हो जाने से घरेलू करेंसी की बात करते हैं या कोई महंगा सामान सस्ते दर देने की बात कर एडवांस में इस्तेमाल करते हैं और अपनी बातों में फंसा कर आम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। लोगों से आग्रह है OLX में ठगी। वर्तमान समय में OLX में सामान की खरीद बिक्री करने के नाम पर आम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास स्कैमर्स करते हैं। इसमें ठग सामान्यतः आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के नाम पर अपने स्थानांतरण कहीं अन्य जगह हो जाने से घरेलू उपकरण बेचने की बात करते हैं या कोई महंगा सामान सस्ते दर में देने की बात कर एडवांस में पैसे की मांग करते हैं और अपनी बातों में फंसाकर आम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। लोगों से आग्रह है कि OLX में जब भी किसी सामान की खरीद बिक्री करते हों तो बिना सामान की डिलीवरी के पेमेंट ना करें और OLX में सामान खरीदते समय OLX के ऑफिशियल चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अपने पर्सनल नंबर या व्हाट्सएप पर चैट ना करें। फिर भी आपके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी होता है तो 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं अथवा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर भी जाकर इसकी सूचना दे सकते हैं।
2: श्रोताओं, विगत महीने यानी मई में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल और ICSE बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। सफल छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अब डिग्री कोर्स और महाविद्यालय का चयन करना है ताकि वे अपनी क्षमता, प्रतिभा और मन मुताबिक कैरियर बना सकें। कुछ कोर्सेस और कॉलेजेस में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का प्रावधान होता है तो वहीं कुछ अन्य कोर्सेस और कॉलेजेस में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। 12वीं कक्षा के परिणाम आने के बाद ही विद्यार्थी ये तय कर पाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। ये चयन थोड़ा मुश्किल और परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन घबराने और हड़बड़ाने की बजाय थोड़ा संभल कर सोच विचार कर निर्णय लेना ही उचित होगा। विभिन्न कॉलेजों में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सत्र 2026-27 की प्रवेश मार्गदर्शिका भी जारी कर दी गई है। BA, BSc, BCom, BBA, BCA समेत अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश के शासकीय और निजी कॉलेजों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को संबद्ध विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कॉलेजों में कुलपति की अनुमति से 14 अगस्त तक प्रवेश लिए जाएंगे। इस वर्ष भी स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश 12वीं की मेरिट सूची के आधार पर होंगे। तो आप तैयार हैं ना कॉलेज में प्रवेश करके बहुत अच्छी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी तरह तो बिल्कुल नहीं।

सच है श्रोताओं, हम सब आजकल किसी न किसी वजह से परेशान से रहने लगे हैं। दरअसल आधुनिक जीवन शैली में व्यस्तता और तनाव के चलते मानसिक संताप और शारीरिक व्याधियों में भी बढ़ोतरी हो गई है। पर जीवन को सही तरीके से जीना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर जीवन में योग अभ्यास को जोड़ लिया जाए। दरअसल जीवन को अपनी पूर्णता के साथ जीने का तरीका सिखाने वाला विज्ञान है योग। योग अभ्यास से जीवन के हर पहलू पर आत्मनियंत्रण कर पाना संभव है, हर परेशानी से बच पाना संभव है। जी हां श्रोताओं, योग संस्कृत की युज धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ है जुड़ना। जुड़ना मन का शरीर से, शरीर का चेतना से। व्यवहारिक स्तर पर कहा जाए तो योग मन, शरीर और भावनाओं को संतुलित करने का, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। योग के न सिर्फ शारीरिक बल्कि कई मानसिक लाभ भी हैं, जो भले ही तुरंत और स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते, पर धीरे धीरे ये फायदे हमारे जीवन को, पूरे जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप की अनियमितता,

0: जीवन को, पूरे जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप की अनियमितता, गठिया, पाचन विकार, अनिद्रा, अवसाद, व्यग्रता जैसी कई गंभीर शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान सिद्ध हुआ है। और जीवन में नियमित योग को सम्मिलित करके धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास जैसे गुणों को भी विकसित किया जाता है। योग के इतने सारे लाभ जान समझकर आप भी इसे अपनाना चाहते हैं तो जरा भी देर मत कीजिए। और इसीलिए नमस्कार रायपुर में आइए अब आपको सुनवाएं डिजिटल युग में योग का महत्व। इस विषय पर मैट्स यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राघव कुमार वर्मा से रमा शंकर की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आजकल की जीवन शैली में भाग दौड़ एक आम बात हो गई है। काम की अधिकता, स्वयं को समय कम दे पाना और बढ़ते मानसिक दबाव के चलते तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। लोग अपने शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान कम ही दे पाते हैं। शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो बीमार होना लाजमी है। और आज की प्रवृत्ति बढ़ गई है कि हम बीमार होने के बाद जब तक इस स्थिति में ना आ जाए कि डॉक्टर के पास हमें जाना पड़े, तब तक हम अपने सेहत के प्रति गंभीर नहीं होते। और श्रोताओं, हम क्यों ना ऐसा करें कि हम बीमार ही ना हो। तो कई लोगों का मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बीमार ना पड़े, लेकिन हमारे प्राचीन पद्धतियां कहती हैं कि हम बीमार ना हो इसके लिए योग और ध्यान हमें करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ हो और हम बीमारी से दूर रहें। तो श्रोताओं, 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस योग दिवस मनाने के पीछे भारत का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो श्रोताओं, योग क्या है आज के समय में और योग का क्या महत्व है और योग से हम निरोग कैसे रह सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राघव कुमार वर्मा जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैट्स यूनिवर्सिटी रायपुर में। तो राघव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार श्रोताओं। योग का जो मूल है कि योग यदि हम करते हैं तो हम रोगों से मुक्त रहते हैं, इस बात को हमारे शास्त्रों में जो श्वेतासुर उपनिषद है उसमें श्लोक स्वरूप में कहा गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम। अर्थात जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, योग अग्नि में अपने आप को तपाता है, वह व्यक्ति न तस्य रोगो, वह व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं हो सकता। रोग उस व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता, वह न कभी बूढ़ा होता है। यह जो श्लोक है श्वेतासुर उपनिषद, जो योग के मूल ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, उनमें कहा गया है। तो निश्चय ही योग की अपनी अहम भूमिका है। प्राचीन जितनी प्रासंगिक थी उतनी ही प्रासंगिक योग आज भी है।
1: तो राघव जी, जैसा हम वर्तमान समय की बात करें तो डिजिटल युग में योग और ध्यान की आवश्यकता क्यों है?
2: आज यदि हम देखें तो आज का युग तकनीक और इंटरनेट का युग, इस तकनीक और इंटरनेट के युग में है हम। अधिकांश जो लोग हैं वो मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिता रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, चाहे भाई बहन। और जब हम अधिक समय इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर बिताते हैं तो हम देखते ही देखते अपने समय की जो समय सीमा है उस समय सीमा को पार कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम बैठे कब थे, और अभी हम देख रहे हैं तो हम घंटों घंटों तक अपना समय उसमें खपा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। और मूल कारण फिर जब समय की तंगी हो जाती है तब हम एक तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसे मानसिक थकावट, जैसे मानसिक रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। और उस अवस्था में योग और ध्यान व्यक्ति को मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है, भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। इस कारण ही हमें आज के इस

0: डिजिटल युग में इनकी आवश्यकता पड़ रही है।
1: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर राघव जी, जो अभी अत्यधिक मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल स्क्रीन का समय हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल रहा है?
0: यदि हम देखें तो आज हम आवश्यकता से अधिक इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग कर रहे हैं। जितनी आवश्यकता है उनका उपयोग उतनी करें, जायज है। पर यदि हम अति सर्वत वजेत, अति की अंत बड़ी दुर्गति पूर्ण होती है, तो आज हमें जितनी आवश्यकता है हम उतनी उपयोग करें, अधिक उपयोग न करें। यदि हम अधिक लंबे समय तक मोबाइल या किसी स्क्रीन पर जब हम देखते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो स्वभावतः आंखों पर भी इसका तनाव पड़ता है, गर्दन और पीठ पर भी इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और इन छोटी छोटी कारणों से हमारी नींद प्रभावित हो जाती है। और नींद जब प्रभावित होती है तो स्वभावतः आप हम सभी महसूस करते हैं कि हम मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं, और जब मानसिक अशांति होती है तो स्वाभाविक है हमारी एकाग्रता पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और जब एकाग्रता कम हो जाती है तो सामाजिक संबंधों में भी दूरी देखने को मिलती है।
1: जी,
0: हम घर में ही एक दूसरे के साथ बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सापन में आने लग जाते हैं। तो निश्चय ही योग, प्राणायाम और ध्यान इन सभी दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध पहले भी हुए हैं और आज भी उतने ही वो प्रभावशील है।
1: तो राघव जी, अभी हम देखते हैं कि मानसिक चिंता, तनाव और जो डिप्रेशन, ये सब जो आम आजकल हो चले हैं, ये युवाओं से लेकर के उम्र दराज लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसमें योग कितना मदद कर सकता है इन सब से उभरने में?
0: जी, जी। योग और ध्यान की बात करें तो योग तो बहुत प्राचीन विधा है, 5000 वर्ष पुरानी विधा इसे हम कहते हैं। कहते हैं योगेन चित्तस्पदेन वाचाम् मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोक्तम् सवरम् मुनीनाम् पतंजलि प्राञ्जलराणतोऽस्मि। अरे ऋषियों में, महर्षियों में, मुनियों में श्रेष्ठ हम उन ऋषियों को प्रणाम करते हैं जिनका नाम पतंजलि है, जिन्होंने अष्टांग योग की विवेचना की, अष्टांग योग का सिद्धांत जनमानस को दिया। योग और ध्यान मन को शांत करने का प्रभावी माध्यम। यदि कोई व्यक्ति नियमित अभ्यास करे तो इनका जो प्रभाव है हमारे तनाव हार्मोन पर पड़ता है, जिसे हम कार्टिसोल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और यही कार्टिसोल हार्मोन जब अनियंत्रित जीवन शैली के कारण अनियंत्रित होने लगती है, तब ये सारे सिम्टम्स मानसिक स्वास्थ्य के विरुद्ध कार्य करने लगती है। और जब हम इन विधाओं को, अभ्यास को अपने जीवन क्रम में स्थान देते हैं, तो यही ध्यान व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जीना आरंभ करा देती है। जब कोई व्यक्ति भूत और भविष्य में जीता है तब वह व्यक्ति अधिक तनावग्रस्त रहता है। आपने, हमने, हम सब ने महसूस किया होगा, जब हम भूत की घटनाओं को सोचते हैं और भविष्य की चिंताओं पर रहते हैं तब अधिक तनाव ग्रसित रहते हैं, पर जब हम योग अभ्यास और ध्यान अभ्यास में तल्लीन रहते हैं तब उस समय, उस क्षण हम वर्तमान में जीते हैं। और यही वर्तमान में जीना ही तो योगमय जीवन है, और यही मानसिक संतुलन का सबसे बड़ा रहस्य है।
1: हम जानना चाहेंगे कि प्रत्येक दिन में योग के लिए हमें कितना समय देना चाहिए?
0: सर, यदि योग की बात करें तो योग सिर्फ व्यायाम नहीं है। यदि योग को समग्रता से हम समझे तो पूरा जीवन हमारे योग पर आधारित है। सुबह जगने से लेकर के रात्रि शयन तक की पूरी प्रक्रिया योगाभ्यास की प्रक्रिया में आती है। हमारा जगने का समय कब है, भोजन का समय क्या है, व्यायाम का समय क्या है, निद्रा का समय क्या है, इन सबका अपना रोल है। पर आप जो एक सामान्य श्रोताओं के संदर्भ में जानना चाह रहे हैं कि हम नियमित शारीरिक व्यायाम कितना करें जिससे हमारे शरीर के समग्र जो दोष है, रोग है, उन पर हम नियंत्रण पा सके, इनके लिए विद्वानों ने कहा है कि कम से कम दिमाग को एक्टिव करने के लिए, मस्तिष्क ब्रेन को एक्टिव करने

0: लिए 10 से 15 मिनट का व्यायाम अनिवार्य है। पर यदि कोई शरीर में रोग है, उस रोग को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें नियमित 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय नियमित शरीर के लिए, मन के लिए देना चाहिए।
1: जी जी।
0: क्योंकि यही व्यायाम, यही योग की जो तकनीक है, चाहे हम उसे आसन कहें, चाहे प्राणायाम कहें, चाहे ध्यान कहें, चाहे सत्कर्म की शुद्धि की क्रिया कहें, चाहे यम और नियम की बात करें, ये सभी क्रियाएं हमारे पूरी कार्यक्षमता को परिवर्तन करने में विशेष सहायक सिद्ध होते हैं।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर राघव जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी का जो डिजिटल दौर है, इसमें संतुलित और सफल जीवन के लिए योग और ध्यान का जो सबसे सफल संदेश क्या हो सकता है?
0: आज के परिवेश में अभी हम देखें, क्योंकि डिजिटल तकनीक का पूरा युग चल रहा है और एक उनकी उपयोगिता जो चल रही है, उपयोगिता के साथ साथ उनका जो मिसयूज जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम सभी को इस प्लेटफॉर्म पर समझने की आवश्यकता है। यदि आज हम अपने इस शरीर मन जो कुदरत ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने, जो हम कहें, इतना सौंदर्य भेंट हमें दिया है, यदि आज हम इसे सहज कर नहीं रख पाएंगे तो आगे जो भी समस्याएं आने वाली है, बहुत ही अधिक आप हम सभी के लिए विचारणीय हो जाएगा, तकलीफदायक हो जाएगी। आज हमें योग की शरण में थोड़े व्यायाम, थोड़े प्राणायाम और थोड़ी ध्यान की शरण में जाने की आवश्यकता है। आप हम सबका सौभाग्य यह है कि हम इस युग में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी है, हम घर बैठे ही चीजों को बहुत सहज तरीके से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। पर हमारी बुद्धिमत्ता है कि हम इन डिजिटल तकनीक का उपयोग सकारात्मक वे में ले रहे हैं या नकारात्मक वे में ले रहे हैं। यदि सकारात्मक वे में लेते हैं तो निश्चित आप हम सभी 15 मिनट का थोड़ा सा वार्म अप शरीर को गर्म करने के लिए, चाहे आप दौड़ सकते हैं, चाहे आप थोड़ा कूद सकते हैं, पांद सकते हैं, जिसे आप सरल भाषा में कहें रस्सी कूद, सरल भाषा में कहें जंपिंग, इस तरीके से अभ्यास कर थोड़े नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास और ध्यान के कुछ तकनीक का हम अभ्यास करके पूरे जीवन को हम साध सकते हैं और आने वाली भविष्य में जो रोग है, इन रोगों से भी हम अलर्ट रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं।
1: जी डॉक्टर राघव वर्मा जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर राघव कुमार वर्मा जी से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेट्स यूनिवर्सिटी रायपुर में। तो राघव जी, कार्यक्रम में आपने विश्व योग दिवस और योग से होने वाले लाभ के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डिजिटल युग में योग का महत्व, इस विषय पर मेट्स यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राघव कुमार वर्मा से रमाशंकर की बातचीत अभी आपने सुनी। और नमस्कार रायपुर में, अब सुनते हैं ये गीत।

और श्रोताओ नमस्कार। रायपुर में अब वक्त है रोजगार संबंधी सूचना का। व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की ओर से ओटी टेक्नीशियन के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट www.vyapamcg.cgstate.gov.in के जरिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों में हुई गलतियां 4 से 6 जुलाई तक सुधारी जा सकती हैं। भर्ती परीक्षा 30 अगस्त को सिर्फ रायपुर में होना निर्धारित है। ओटी टेक्नीशियन की भर्ती बस्तर और सरगुजा संभाग में की जानी है। सरगुजा संभाग में 10 और बस्तर संभाग में 5 पद रिक्त हैं, जिसमें से 4 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति और 2 अति पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। आवेदन ओटी

एशियन में भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र विषय में 12वीं और ओटी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इस सूचना के बाद अब बारी है एक और गीत की।

श्रोताओं, वर्तमान समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर देख कर भी अनदेखा कर देते हैं हम। आज के समय में बहुत से युवा बेहतर अवसरों, करियर और आर्थिक उन्नति की तलाश में अपने घरों से दूर चले जाते हैं। ये स्वाभाविक भी है और कई बार आवश्यक भी, लेकिन इस दौड़ में अक्सर पीछे छूट जाते हैं वे लोग जिन्होंने हमें चलना सिखाया था, हमारे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी। जीवन में पैसा, सुविधाएं और आराम महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी जरूरी है समय। हम अपने बुजुर्गों को अच्छी दवाइयां, आरामदायक घर और आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं, पर उनके मन का अकेलापन केवल उनके परिवार का साथ ही दूर कर सकता है। जरा सोचें, हम अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए वास्तव में कितना समय निकाल पाते हैं। हमारे बुजुर्ग अकेलेपन से जन्मी पीड़ा झेलने को विवश हैं। परिवार की भौगोलिक दूरियां मिलने के अवसरों को सीमित कर देती हैं, लेकिन उनका प्रेम, उनका स्नेह आज भी हमारी स्मृतियों में दर्ज है ना? श्रोताओं, बुजुर्गों को केवल सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें चाहिए अपने लोगों का साथ, कुछ बातें, कुछ पल, कुछ मुस्कानें और ये विश्वास कि उनका परिवार उनके साथ है। हो सकता है हमारे माता पिता या बुजुर्ग आधुनिक सोच के ना हों, उनके साथ तालमेल बैठाना कभी कभी कठिन लगे, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि जब हम छोटे थे तब उन्होंने भी हमारी हर आदत, हर जिद और हर कमजोरी को स्वीकार किया था। इसलिए संभव हो सके तो अपने माता पिता, दादा नानी और नाना नानी के लिए थोड़ा समय निकालिए। भले ही आप उनके साथ न रह सके, लेकिन रोज एक फोन कॉल, एक वीडियो कॉल, एक मुलाकात या कुछ मिनटों की बातचीत उनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है, क्योंकि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि समय, संवेदना और उपस्थिति का नाम है। और अंततः जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, अपने लोगों का साथ होता है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।

आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार रायपुर में आज बस इतना ही। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रही थी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा

0: हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तन

0: पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार

0: now this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए अपने पत्रों के उत्तर। कार्यक्रम है आपके पत्र।

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और हरजीत का नमस्कार।
0: हरजीत जी, गर्मी का मौसम जब अपने चरम पर होता है तो हमारे श्रोताओं को वर्षा ऋतु का इंतजार रहता है, लेकिन इस कार्यक्रम में तो भाई हर हफ्ते हमें हमारे श्रोताओं के पत्रों का इंतजार रहता है ना
1: जी।
0: तो इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए बताइए, आपके हाथ में ये पहला पोस्ट कार्ड किसका है?
1: दीपक जी, ये पहला पोस्ट कार्ड है खैरागढ़ से देवेंद्र महोबे का। ये लिखते हैं, 24 मई को देश की वाणी आकाशवाणी में पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्याम वर्मा जी से ली गई भेंट वार्ता सुनी। मोर भुइयां अजी सुनिए जैसे अनेक लोकप्रिय कार्यक्रमों की यादें ताजा हो गई। श्याम जी और दीपक जी को साधुवाद। मगरलोड से पुन्नूराम साहू का ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है। ये लिखते हैं, माह मई की अंतिम तिथि रविवार 31 मई को दो महत्वपूर्ण प्रसारण सुनने का अवसर मिला। इस दिन प्रातः 7:15 बजे देश की वाणी आकाशवाणी के क्रम में आकाशवाणी रायपुर के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री लखनलाल भौरे जी से दीपक हटवार द्वारा ली गई भेंटवार्ता, जिसमें भौरे जी ने आकाशवाणी में अपनी दीर्घ सेवा काल के अविस्मरणीय संस्मरण सुनाए, कुछ रोचक प्रसंग भी शेयर किए। श्रोताओं से मधुर संबंध और प्रेम व्यवहार भी भौरे जी की अपनी विशेषता है। 31 मई को एक और कार्यक्रम मन की बात से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से छत्तीसगढ़ के युवा धावक अनिमेश कुजूर से बातचीत और बिलासपुर जिले के मल्हार से प्राप्त दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं के बारे में चर्चा सुनकर हमें गर्व की अनुभूति हुई। दोनों ही कार्यक्रमों के सफल प्रसारण हेतु आकाशवाणी को हार्दिक साधुवाद।
0: हरजीत जी, मन की बात की जहां तक बात है तो माह के अंतिम रविवार को हम सभी को इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है और मन की बात के साथ ही इसी दिन देश की वाणी आकाशवाणी का भी प्रसारण हुआ था और इसके पहले रविवार का भी पत्र आपने पढ़ा जिसमें देश की वाणी आकाशवाणी में हमारे पूर्व उद्घोषक साथी श्याम वर्मा जिससे हमने बातचीत की थी और उसके बाद 31 तारीख के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी रायपुर के पूर्व उपनिदेशक लखनलाल भौर्य जी से हमने बातचीत की थी। तो ऐसे बहुत से प्रस्तुतकर्ता, बहुत से उद्घोषक साथी, बहुत से कलाकार जिनसे की गई बातचीत की ये लंबी श्रृंखला थी देश की वाणी आकाशवाणी, और पूरे एक वर्ष चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आकाशवाणी के लिए समर्पित अनेक लोगों से बातचीत की जिसे हमारे श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। इन पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये अगला पत्र हमें भेजा है नर्मदा धाम सुरसुली से। कैलाश और सुरेश यादव लिखते हैं, 1 जून को भक्ति संगीत से सराबोर वंदना कार्यक्रम सुना जिसमें मेरा देश महान और बंदे किस पर करे गुमान, तू है 2 दिन का मेहमान, देश प्रेम से ओत प्रोत वंदना सुनकर मन देश प्रेम की भावना से सराबोर हो गया और दिन की शुरुआत अच्छे कामों से करने के लिए प्रेरित किया।
0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रतिदिन प्रसारित होता है हरजीत जी, और हर दिन प्रसारित होने वाले भजन हमें ईश्वर के समीप ले जाते हैं और अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला पोस्ट कार्ड आपके हाथ में किसका है?
1: दीपक जी, अगला पोस्ट कार्ड हमें भेजा है बेमेतरा से सुरेश और पूर्णिमा सारथी ने। ये लिखते हैं, 4 जून गुरुवार को सुबह ताजगी भरी नई उमंग के साथ नमस्कार रायपुर को बड़े ही ध्यान से सुना। इस दिन कार्यक्रम को बड़े ही रोचक ढंग से पेश किया हमारी सौम्या रिजवी जी ने, जिन्होंने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर कमलेश्वर साहू द्वारा लाखों पेड़ लगाने की बात हम तक पहुँचाई। ये हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। भीषण गर्मी में चलती कार या खड़ी कार में अचानक आग लग जाने की बातें बताई, इस अच्छी प्रस्तुति के लिए सौम्या रिजवी को बधाई।
0: और ये हमें पोस्टकार्ड भेजा है अहिवारा

0: से डबल कुमार और हेमन राज धीवर ने लिखते हैं, 7 जून के नमस्कार रायपुर ला प्रस्तुत करिस दीपा, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य स्वार्थ साधनम वाक्य के संग में फिल्म नायक के गीत रुखी सुखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया बड़ा मजा सुनेला मिलिस। यही दिन देश के वाणी आकाशवाणी के आखिरी क्रम में पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका कल्पना यादव जिले दीपक हटवार ले हुए गोठबात में सुरीली आवाज के धनी कल्पना जी के आकाशवाणी ले जुड़े जीवन यात्रा ला सुने बर मिलिस। और ये अगला पोस्टकार्ड आपके हाथ में किसका है
1: दीपक जी? ये अगला पोस्टकार्ड हमें भेजा है सिमगा से लव कुश और प्रहलाद सेन ने।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं कि रिश्तों की मधुरता और जीवन के अनुभव की शिक्षा हमें देश की वाणी आकाशवाणी से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई प्रेरक व्यक्तित्व आदर्श के रूप में सामने रहता है। देश की वाणी आकाशवाणी के एक वर्ष की शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई।
0: और ये अगला पोस्टकार्ड किसका है हरजीत जी?
1: दीपक जी ये अगला पोस्टकार्ड हमें भेजा है शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा। ये लिखते हैं, 7 जून को बहुत इंतजार के बाद आखिर आपने श्रोताओं की दिली तमन्ना पूरी कर दी। देश की वाणी आकाशवाणी के अंतर्गत अपने समय की इस लोकप्रिय उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव जी को आमंत्रित करके, जिसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। इंतजार की सारी थकान दूर हो गई। कल्पना जी को सुनना सुखद रहा, खासकर उनके पारिवारिक परिवेश के बारे में श्री दीपक हटवार जी और कल्पना जी की बातचीत बेहद पसंद आई।
0: हरजीत जी, देश की वाणी आकाशवाणी के इस अंक की तारीफ में देखिए हमारे कितने सारे श्रोताओं ने पोस्टकार्ड भेजे हैं, और वाकई कल्पना जी से बातचीत करते हुए हम भी उन पुराने दिनों की यादों में खो गए थे जब वे यहाँ से विभिन्न कार्यक्रमों को प्रसारित किया करती थीं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी आवाज जन जन के घरों तक गूंजा करती थी, और वाकई वो मीठी आवाज आज भी हमारे श्रोताओं के दिलों में बसी हुई है, और उनकी आवाज़ को वर्षों के बाद सुनकर हमारे श्रोताओं को भी उन दिनों के बहुत सारे कार्यक्रम याद आने लगे होंगे। तो इस कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, पत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला पोस्टकार्ड किसका है?
1: अगला पोस्टकार्ड हमें भेजा है शिवचंद्राकर ने शीतला नगर दुर्ग से।
0: जी,
1: ये लिखते हैं, अहिंसा मन की स्वच्छता है और स्वच्छता स्वास्थ्य का प्रतीक। उतना ही अहिंसावादी बने जितना स्वयं पर विश्वास हो। अहिंसा गंगा नदी का प्रवाह है। महात्मा गांधी का अहिंसा पर केंद्रित 8 जून का चिंतन लाजवाब रहा। लेखक शंकर प्रसाद श्रीवास्तव और आलेख को पढ़ने हेतु दीपक हटवार, आप दोनों को हार्दिक बधाई। चिंतन की ही तारीफ में ये पत्र है कोरदा से कलीराम यादव का।
0: हमारे श्रोता 5 मिनट के चिंतन को सुनकर उसमें कही गई बातों को आत्मसात भी करते हैं हरजीत जी, और वाकई हर रोज चिंतन हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करता है, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये प्रेरणा यूं ही हमारे प्रसारण से और आपके श्रवण से जुड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 31 मई को आप मन के गीत की प्रस्तुति के लिए अर्पिता बेड़ेकर को बधाई दी है सिमगा से रमेश कुमार और माया यादव ने।
0: हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों के प्रति हमारे श्रोताओं का स्नेह बहुत पुराना है, और आज भी सतत रूप से आपके पत्र हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरजीत जी। ये तो हो गए पोस्टकार्ड
1: जी,
0: अब आपके हाथ में हमें ईमेल नजर आ रहे हैं, तो बताइए ये पहला ईमेल किसका है?
1: दीपक जी ये मेल हमें भेजा है ठेठवार पारा कनेरी से सनत कुमार यादव ने। ये लिखते हैं, 7 जून को आकाशवाणी रायपुर के लोकप्रिय कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी की अंतिम कड़ी में वरिष्ठ प्रसारक दीपक हटवार द्वारा आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यादव से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण सुनने का अवसर मिला। ये प्रस्तुति केवल एक साक्षात्कार भर नहीं थी, बल्कि श्रोताओं को उन सुनहरे दिनों की स्मृतियों से जोड़ने वाली एक भावनात्मक यात्रा भी थी। भेंटवार्ता के दौरान कल्पना यादव की सहज मधुर और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने वर्षों पुरानी यादों को फिर से जीवंत कर दिया। बचपन में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसले कार्यक्रम को सुनने का आनंद आज भी स्मृतियों में ताजा है, और अन्य विविध कार्यक्रमों में उनकी सशक्त संचालन शैली और आत्मीय प्रस्तुति श्रोताओं के बीच विशेष पहचान रखती है। दीपक हटवार ने बातचीत को रोचक और प्रवाहपूर्ण बनाए रखा। उनकी आवाज की वही मिठास और आत्मीयता आज भी बरकरार दिखाई दी। वर्षों बाद रेडियो पर उनकी उपस्थिति सुनना एक सुखद अनुभव रहा। इस भेंटवार्ता की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, उसने रेडियो के स्वर्णिम दौर की स्मृतियों को पुनर्जीवित कर दिया। इसी कार्यक्रम के लिए तारीफ में ये मेल हमें मिला है भाटापारा से बचकामल और मोतीलाल यादव का, खमतराई रायपुर से हीरा साहू का।
0: देश की वाणी

0: आकाशवाणी के इस अंतिम अंक की तारीफ में हरजीत जी, देखिए कितने सारे पत्र हमें मिले हैं, और वाकई इस अंतिम अंक के साथ इस पूरी श्रृंखला के समापन की समीक्षा में मिले आपके इस पत्र ने गुजरे हुए सुनहरे दौर की बहुत सारी यादों को ताज़ा किया, और इन स्मृतियों के साथ हम अपने वर्तमान को भरपूर जिएंगे और भविष्य का स्वागत भी करेंगे, इसी कामना के साथ पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीपक जी, अगला ये मेल हमें प्राप्त हुआ है लेवई से। यहाँ से गुलाबदास मानीपुरी और राजा मानीपुरी लिखते हैं, 7 जून को प्रसारित कार्यक्रम कानून की बात में संपत्ति विवाद के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जो बेहद उपयोगी लगी।
0: हमारे कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को देश के संविधान की जानकारी सतत रूप से मिल रही है, पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कन्यावाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी और पीएल निर्मल लिखते हैं, आज आकाशवाणी की स्थापना दिवस के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। आकाशवाणी अपने स्थापना के इन 90 वर्षों के दौरान देश के विकास यात्रा में हम सफर रहा। इसने सदैव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय वाक्य को पूरा कर चरितार्थ करते हुए सूचना शिक्षा और मनोरंजन तीनों ही क्षेत्र में सार्थक भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में लोकगीत और लोक संगीतों की शानदार परंपरा रही है। इस लोक कला को संजोने और इसे मंच प्रदान करने में आकाशवाणी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8 जून को सुबह आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम सुना, जो हमारे लिए सार्थक रहा। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल हमें मिला है दुर्ग से भवानी शंकर वर्मा का।
0: समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के विशिष्ट जनों ने आकाशवाणी के योगदान को याद करते हुए बहुत सारे विचार व्यक्त किए हरजीत जी, और उन विचारों के माध्यम से हमारे श्रोताओं ने भी जाना कि हमारे प्रदेश के विकास में आकाशवाणी का कितना योगदान रहा है और हमेशा रहेगा। इस कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये अगला मेल हमें मिला है दीपक जी लालपुर मारो से।
0: जी,
1: कीर्ति कुमार ध्रुव और संतोषी ध्रुव लिखते हैं, सुबह सुबह श्री रामचरित मानस गान सुनकर अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। निषाद राज और भरत के बीच का जो मिलन होता है वह अद्भुत था। ये मनमोहक प्रसंग सुनकर मन पवित्र हो गया। संगीतकार सतीश भाटिया और गायक अनूप जलोटा थे। इस कार्यक्रम की अद्भुत प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को साधुवाद।
0: श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 6:35 पर होता है, और 10 मिनट की इस अवधि के साथ यह श्रृंखला लगातार चल रही है। यूं ही सुनते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धमतरी से रामचंद माखीजा और सविता माखीजा लिखते हैं, 9 जून को प्रसारित अजी सुनिए सुना, लेखिका थी सुनीला दास, प्रस्तुतकर्ता समीर शुक्ल, प्रतिभागी संजय पांडे, श्याम वर्मा और अर्पिता बेड़ेकर को बधाई। ये नाटिका प्रेरित करती है कि घर परिवार में पति पत्नी साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं, जिसमें आपसी तालमेल समन्वय बनाकर चलना पड़ता है।
0: पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए का हर अंक एक संदेश भी देता है हरजीत जी, और ये संदेश तो भाई परिवार में सुख शांति का ही होता है, जिसे आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईमेल हमें भेजा है परसा टोला से ओम प्रकाश मसिया और सिलोचनी मसिया ने। लिखते हैं कि 9 जून को छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइया सुना, संपादन महेंद्र साहू जी का था, कवि गोष्ठी का संचालन ईश्वर साहू जी ने किया। अब दिनों दिन ये गर्मी उमिहाव लेवत है, जैसे भूमि के घर मां सूरज पांव देवत है। शिव कुमार अंगारे जी की कविता थी, घाम जरत सरी देह चटाचट अड़बड़ जना थे, सूरज सिरागे गली खोर मां अपन ताप देखा थे। सुनंदा शर्मा जी की रचना थी, जेठ के महीना आवत है, संजा बिहनिया भोमरा तपत है, मुश्किल हो गए जीना। कार्यक्रम के सुघर प्रस्तुति पर कवि मनसंग महेंद्र साहू जिला अंतस ले धन्यवाद। और हरजीत जी, देखिए तो मोर भुइया की ही तारीफ में कुछ और मेल हमें प्राप्त हुए हैं।
1: ये मेल है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार, सुजाता साहू, सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम मानवी पटेल, भानपुरी मुसरा से आत्माराम और विदेशी राम यादव का, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर और कचरीबाई देवांगन, नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह और भाग्यश्री राजपूत का।
0: हरजीत जी, मोर भुइया की तारीफ में देखे कितने सारे मेल हमें प्राप्त हुए हैं, और सभी कवियों की कविताएं हमारे श्रोताओं को पसंद आई, और इन्होंने तो कुछ पंक्तियां भी लिखकर भेजी हैं, और वाकई ये जो गर्मी का मौसम है ना, इस मौसम में ऐसी कविताएं जिसमें वर्षा ऋतु को आमंत्रण

0: दिया गया है। हम सभी की ये कामना है कि इस आमंत्रण को ऋतुराज वर्षा जल्द से जल्द स्वीकार करें और छत्तीसगढ़ में भी बरसात शुरू हो जाए, ऐसी कामना के साथ इन पत्रों के लिए आपको धन्यवाद।
1: दीपक जी, ये अगले मेल में कुछ शिकायत कर रहे हैं मुंडा टोला डोंडी लोहारा से डोमेंद्र नेताम और गंगेश्वरी नेताम। ये लिखते हैं, हम आकाशवाणी रायपुर के नियमित और पुराने श्रोता हैं, लेकिन विगत कई दिनों से हमारा फरमाइशी कार्यक्रमों में जैसे आपके मीत ये गीत, सुरों का सफर, अनुरोध गीत, यादें, आप मन के गीत, इन कार्यक्रमों में हमारा नाम शामिल नहीं किया गया है।
0: भाई देखिए, आपका पत्र हमें मिला तो हमने शामिल कर लिया, इसी तरह से उन कार्यक्रमों में भी आपके मेल जैसे ही प्राप्त होंगे इन्हें जरूर पढ़ा जाएगा। ये अगला मेल किसका है?
1: अगला मेल है करही बदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर और गीतेश्वरी निर्मलकर का। ये लिखते हैं, 11 जून को दोपहर कार्यक्रम लोक सुधा सुना, जिसमें हल्बी गीत सुनने को मिले। कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हमने सुना, हल्बी गीत बहुत बढ़िया लगे, कलाकार को दिल से धन्यवाद। बस्तर के गीतों में दंडकारण्य प्रकृति के उद्गार हैं, लोक जीवन इन गीतों से ओतप्रोत है।
0: वे देखिए, हल्बी गीत हो या किसी भी तरह के लोकगीत, हरजीत जी जब उन्हें हम सुनते हैं तो सुदूर गांव और वनांचल के उन कलाकारों की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन गीतों के लिए समर्पित किया है। तो कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, पत्र के लिए धन्यवाद।
1: दीपक जी, अगला मेल है मेघापारा से राम कुशल पटेल और संतोषी पटेल का। ये लिखते हैं, 12 जून को चिंतन सुना, आलेख श्री पुरुषोत्तम लाल शुक्ल जी का था, अनुभव ज्ञान चिंता और चिंतन में अंतर बताया, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्ञानवर्धक था, बहुत बहुत आभार धन्यवाद कोटि कोटि बधाई।
0: चिंतन में कही गई बातें कितनी प्रेरक होती है हरजीत जी, और हमारे श्रोता भी अपने इस पत्र के माध्यम से चिंतन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए आपको।
1: अगला मेल हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल और मोरस जंघेल ने। ये लिखते हैं, 12 जून को कार्यक्रम नवा बिहान में नमो ड्रोन दीदी चित्र रेखा साहू के गोड बात सुने बर मिली, जेकर संग गोड बात करत रही हवे बीरभान साहू, कार्यक्रम बहुते बढ़िया लगी सवे, भेंट वार्ता बर चित्र रेखा साहू और बीरभान साहू ला बने अकन बधाई।
0: नवा बिहान कार्यक्रम में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और जिनमें ड्रोन दीदियों से जो बातचीत की जा रही है ना हरजीत जी, उस बातचीत से हमारे प्रदेश की जो बहनें हैं जो कृषि के कार्य में समर्पित हैं उन्हें भी नई नई तकनीक की जानकारी मिल रही है। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: दीपक जी, ये मेल हमें भेजा है छेदूलाल यादव और सीता यादव ने धरसीवा से। ये लिखते हैं, 13 जून 2026 को नमस्कार रायपुर में बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी गई, जिसमें 15 जून से 15 जुलाई तक कुष्ठ रोग की पहचान रायपुर जिले में की जाएगी, जिसमें सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जांच करेंगे, जिससे इस रोग की पहचान हो सके और सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त इलाज करा निरोगी काया प्राप्त कर सके, इसलिए जांचकर्ता सहयोग करने की बात और जानकारी बहुत अच्छी लगी। नमस्कार रायपुर की इस अच्छी प्रस्तुति के लिए श्रेया श्रीवास्तव को हार्दिक बधाई।
0: नमस्कार रायपुर के हर अंक में जनोपयोगी सूचनाएं होती हैं, विशेषज्ञों से बातचीत की जाती है और हमारे श्रोताओं का ज्ञान प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही संतोष की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए आपको।
1: खैरागढ़ राजलालपुर से ये मेल हमें भेजा है मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे ने। ये लिखते हैं, 13 जून को प्रसारित समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में एक भेंट वार्ता सुनी, जिसका विषय था एल्बिनिज्म, कारण लक्षण और उपचार। इस विषय पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी से प्रवीणा त्रिपाठी की बातचीत महत्वपूर्ण, उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही। हमें ये जानने और समझने को मिला कि एल्बिनिज्म एक दुर्लभ और जन्मजात अनुवांशिक त्वचा रोग है। इस रोग की स्थिति में किसी व्यक्ति के शरीर में मेलेनिन नामक पिगमेंट का बनना बहुत ही कम हो जाता है या बन ही नहीं पाता, जिसके कारण त्वचा, बाल और आंखों का स्वाभाविक रंग प्रभावित होता है। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, किसी को छूने और साथ रहने से व्यक्ति इस रोग से प्रभावित नहीं होता। ये सब जानने व समझने को मिला और ये भेंटवार्ता विश्व एल्बिनिज्म दिवस के अवसर पर प्रसारित की गई, जो समसामयिक और सारगर्भित रही। एक सार्थक और उपयोगी भेंटवार्ता के लिए डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी, प्रवीणा त्रिपाठी जी और आकाशवाणी रायपुर को हमारी कोटिशह बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है अडार नांदघाट से माखन चांदनी वर्मा का।
0: डॉक्टर की सलाह के हर अंक में अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है और इस बार की जानकारी एक त्वचा से संबंधित समस्या पर केंद्रित थी और जिससे हमारे श्रोताओं का भी

0: ज्ञान काफी बढ़ा होगा कि इस तरह की समस्या का कोई भी व्यक्ति अगर सामना कर रहा है तो अपने जीवन में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, पत्रों के लिए धन्यवाद।
1: ग्राम तेंदुभाटा मगरलोड से उमेंद्र कुमार निषाद और देविका निषाद लिखते हैं, 13 जून को बातों बातों में केंद्र सरकार के 12 साल के संबंध में छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी से विकल्प रंजन शुक्ला जी की बातचीत सुनी, बहुत बढ़िया लगी। शर्मा जी ने बताया कि मोदी जी ने इन 12 वर्षों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और लाभ भी दिलाया है और देश विदेश में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया हमें सम्मान की दृष्टि से देख रही है। इस अच्छी बातचीत के लिए शशांक शर्मा जी और भेंटकर्ता विकल्प रंजन शुक्ला समाचार एकांश को दिल से धन्यवाद। इसी भेंटवार्ता की तारीख में ये मेल है रायपुर से वैभव और चिराग जैन का।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर जन जन तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाई जा रही है हरजीत जी, ताकि हमारे श्रोता देश में क्या हो रहा है ये पूरी तरह से जान सके। पत्रों के लिए धन्यवाद।
1: ये अगला मेल हमें भेजा है दीपक जी लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और राजा दास मानिकपुरी ने
0: जी।
1: ये लिखते हैं, 13 जून को प्रसारित गाथा झरोके से कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के राजा जगत सिंह की बेटी वीरांगना फूलकुंवर की गाथा का वर्णन किया गया जो शिक्षाप्रद लगा। ये रूपक बेटी और बेटे के बीच के फर्क को खत्म करता है। जो काम बेटा कर सकता है वो काम हमारी बेटी भी कर सकती है। रूपक दिल को छू गया। शानदार प्रसारण के लिए धन्यवाद।
0: गाथा झरोखे से इस क्रम में आकाशवाणी के संग्रहालय में जो पुराने कार्यक्रम हैं उनका प्रसारण किया जा रहा है और जो कि लोक गाथाओं पर केंद्रित है, जिसे आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भारती राठौर वरुण राठौर रायपुर से लिखते हैं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में 12 जून को पहुना थे राजीव प्रकाश जी, IIT भिलाई के निदेशक, भेंटकर्ता थे दीपक हटवार। दीपक जी के एक सवाल के जवाब में राजीव जी ने कहा कि दुर्ग प्रशासन के साथ सहभागी कर IIT पार्क का मकसद युवा वर्ग को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर पंडुम मेले में IIT उपकरण का प्रदर्शन का आशय ये है कि जरूरतमंद उन्हें आसान लोन लेकर खरीद सके। विषय संबंधी सटीक सवाल और राजीव जी के सार्थक प्रत्युत्तर के लिए साधुवाद।
0: IIT भिलाई के निदेशक राजीव प्रकाश जी से ली गई इस भेंट वार्ता के माध्यम से हमारे अपने अंचल में IIT की विशेषताएं, उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने और युवाओं ने विस्तार से जाना, ये हमारे प्रसारण की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा लिखते हैं, आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित नियमित क्रम नमस्कार रायपुर एक बगिया के समान है जो रंग रंग की खुशबू से महकती रहती है। 14 जून को प्यारी धरती, विश्व रक्तदान दिवस, साइबर फ्रॉड, संगीत नाट्य रंगकर्मी और योग से रोग मुक्त की रोचक जानकारी के लिए नमस्कार रायपुर के प्रस्तुतकर्ता देवव्रत भगत जी को धन्यवाद।
0: बहुत सारी जानकारियों का खजाना है नमस्कार रायपुर और इस खजाने से हर रोज बहुत सारे मोती हमारे श्रोता चुन लेते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: बघेरा दुर्ग से BL वैष्णव लिखते हैं, 15 जून का दानी प्रसाद शर्मा जी का सुबह का चिंतन जीवन मूल्यों का विनाश बहुत ही प्रेरणादायक लगा। आज पश्चिमी सभ्यता आधुनिकीकरण के कारण हमारी पारिवारिक संस्कृति जड़ों से दूर होती जा रही है। शिक्षा केवल डिग्री नौकरी पाने का एकमात्र साधन बनकर रह गई है और भौतिक सुख सुविधाओं को सौभाग्य मान लेने से आपसी प्रेम और आत्मीयता कम हुई है। इसे बचाए रखने के लिए परिवार में बच्चों के साथ समय बिताना और बुजुर्गों और बड़ों के प्रति सम्मान और अनुभव का महत्व सिखाएं तथा बच्चों में ध्यान, योग, प्राणायाम, अच्छे महापुरुषों की जीवनदायी प्रेरणादायक कहानी अध्ययन कराएं, मानसिक शांति और सकारात्मक विचार विकसित कराना हम बड़ों का दायित्व है। इतने अच्छे प्रेरणादायक चिंतन के लिए दानी प्रसाद शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद।
0: वे हमारे श्रोता हमारे चिंतन को सुनकर सिर्फ श्रवण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उस चिंतन को आत्मसात भी कर रहे हैं और उसमें कही गई बातों पर अमल करते हुए अपने और परिवार जनों को भी बेहतरी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: ये मेल हमें भेजा है चिरमरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह और अनुभव सिंह ने। ये लिखते हैं, 14 जून को खेल संसार में साप्ताहिक खेल समीक्षा, खेल तैराकी के विषय पर बहुत ही अच्छी खेल गतिविधियों से संबंधित

0: महत्वपूर्ण रोचक जानकारी को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतकर्ता रमाशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साप्ताहिक कार्यक्रम खेल संसार के माध्यम से हम अंचल की खेल प्रतिभा से बातचीत करते हैं और उनके अनुभवों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, जिसे आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू और योगेश साहू लिखते हैं, 7 जून को प्रसारित आप मन के गीत कार्यक्रम लेकर आई अनुभा अग्रवाल की प्रस्तुति हमें मन भावन लगी और इस कार्यक्रम में हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। घटारानी अंचल फूरझर से योगेश्वर साहू डोमेश्वरी साहू लिखते हैं, 8 जून के फोन करव छत्तीसगढ़ी गीत सुनाव कार्यक्रम ला धर के लाए रहीन अपन गुड़तुर बोली में तारकेश्वरी आसुदानी। कार्यक्रम में श्रोता संगी मन के गांव शहर कैरियर खेती किसानी के विषय में गोड़ बात बढ़िया लगी। श्रोता संगी के पसंद में सुघर छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुने बर कार्यक्रम सुन के मन गदगद हो गए। मनमोहक प्रस्तुति खातिर गाढ़ा गाढ़ा बधाई। कमार मुड़ा से सतीश गिरी गोस्वामी श्रेया गिरी गोस्वामी लिखते हैं, कार्यक्रम आप मन के गीत 9 जून को शशांक खरे जी ने अपनी मधुर वाणी में प्रस्तुत किया, आनंद आ गया। आकाशवाणी परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम के लिए ये मेल हमें भेजा है पुतकी कला से राधेश्याम और वीणा पांडे ने, भीमखोज तरपोंगी से संतोष और होमेश गुप्ता, फूलझर घटारानी से यामिनी और मुस्कान साहू, आवरा डबरी से श्यामलाल और मोगरा साहू ने, लोरमी ग्राम चचेरी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी लिखते हैं, 10 जून के ईमेल भेजव छत्तीसगढ़ी गीत सुनाव कार्यक्रम में हमर मायारू भैया संजय पाठक जी श्रोता संगवारी मन ले भेजे गए ईमेल और नाम शामिल कर बहुत सुघर सुघर हमर पसंद के गीत सुनाइन, जेखर मनमोहक प्रस्तुति बर आकाशवाणी परिवार ले हमर मया भरे बधाई। कुई ग्राम भंगी टोला से ननका राम साहू जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 11 जून के ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम में अनुभा अग्रवाल जी, श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारे पसंद के बेहतरीन गीत सुनाए। ग्राम भड़गा कोदवा गोडान से श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी लिखते हैं, 12 जून के छत्तीसगढ़ी फरमाइशी सुर सिंगार कार्यक्रम में हमर मयारू भैया संजय पाठक जी श्रोता संगवारी मन ले भेजे गए ईमेल पाती और नाव शामिल कर बहुत सुघर सुघर हमर पसंद के गीत सुनाइन, आकाशवाणी परिवार ल हमर कोरी कोरी बधाई। इसी कार्यक्रम के लिए हमें ये मेल भेजा है सेहा मालगी से सुखनंदन और शिवरानी चंद्रवंशी ने, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक और के आर साहू ने, लोरमी ग्राम करुहानार से गोमती रजक और काजल रजक लिखते हैं, 13 जून के फरमाइशी आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में हरजीत कौर जी श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल पत्र और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के शानदार गीत प्रस्तुत किए, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम के लिए मेल हमें भेजा है टेकापारा बालोद से चिंताराम यादव, रवि प्रकाश यादव पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, गंडई पंडेरिया से शिवा और राज यादव ने, गांव गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलऊ दास मानिकपुरी लिखते हैं, 14 जून को आप मन के गीत सुना, प्रवीणा त्रिपाठी ने अधिक से अधिक श्रोताओं के पत्र और ईमेल शामिल किए, दिल से धन्यवाद। इसी कार्यक्रम के लिए गेंदा टोला से ये मेल हमें भेजा है बीरेंद्र कुमार और गजेंद्र गुप्ता ने, लोरमी ग्राम करुहानार से गोमती रजक और काजल रजक लिखते हैं, 15 जून के फोन करव छत्तीसगढ़ी गीत सुनाव कार्यक्रम में हमर मयारू दीदी प्रवीणा त्रिपाठी जी श्रोता संगवारी मन ले फोन में गोड़ बात करके और गांव शहर काम काज के बारे में पूछताछ करके हमर पसंद के बहुत सुघर सुघर रिकिम रिकिम ले गीत सुनाइन, जेखर मनमोहक प्रस्तुति बर आकाशवाणी परिवार ल हमर कोरी कोरी बधाई। इसी कार्यक्रम के लिए ये मेल हमें भेजा है गंडई टिकरी पारा से दीपक कुमार जयंती देवांगन ने, हसदा नंबर 2 से कमलेश्वर और जितेंद्र साहू, गंडई पंडरिया से पवन कुमार और प्रभा देवी सेन ने, नेवई उतई से विक्की और उर्वशी देवांगन ने।
1: हरजीत जी, कितने सारे फरमाइशी कार्यक्रम हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन फरमाइशी कार्यक्रम ना हो। तो इन सभी ईमेल्स के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और अब चलने का वक्त हो रहा है, तो चलते चलते हम आपको बता दें मेल आईडी raiapkepatra1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड 49200।

अपने पत्रों के उत्तर अभी आप सुन रहे थे, कार्यक्रम था आपके पत्र, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, ये आकाशवाणी रायपुर है, गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज सुनिए श्रीमती तारा बहन के बारे में गांधी जी के विचार।
1: हिंदुस्तान के गांवों के लिए उसके हृदय में जो प्रेम था, उसमें कोई उससे बाजी नहीं मार सकता था। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हम में से अच्छे लोगों में जितना उत्साह है, उससे कम तारा बहन में नहीं था। दर्जे की छुटाई जहां भी देखती अधीर हो जाती थी। गरीब स्त्रियों और बच्चों से वह इतनी आज़ादी के साथ मिलती थी कि देखते ही बनता था। सेवा करके वह किसी का उपकार कर रही है, यह भावना तो उसमें थी ही नहीं। किसी से उसने अपनी सेवा नहीं कराई, किंतु कोई भी हो, उसकी सेवा वह अत्यंत उत्साह के साथ करती थी। उसने अपना अहंकार धो डाला था। ऐसी मूक सेविका थी वह कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं लगता था कि दाहिने हाथ ने क्या काम किया है। ईश्वर उसकी दिवंगत आत्मा को चिर शांति दे। प्रायः हर विलायती डाक से मेरे पास स्वर्गीय तारा बहन यानी कि मेरी चेसले के सगे संबंधियों और मित्रों के पत्र आते रहते हैं। इनमें उनके अनेक गुणों का वर्णन रहता है। कई सज्जन उनके अनेक प्रकार के उपकारों का वर्णन करते हैं जो स्वयं तारा बहन ने उन पर किए। कुछ लिखते हैं कि उन्होंने हमें फलां फलां सहायता देने का वचन दिया था, और कुछ तारा बहन द्वारा छोड़े गए एक या अनेक विरासत नामों का भी उल्लेख करते हैं। हालांकि महादेव देसाई इन सब पत्र भेजने वालों को अपने थोड़े समय में जितना उनसे बन पड़ता है ब्यौरेवार जानकारी देने की कोशिश करते हैं।

फिर भी तमाम संबंधित लोगों के लाभ के लिए ये जाहिर कर देना ज़रूरी है कि अपनी शोचनीय मृत्यु के कुछ ही समय पहले उन्होंने मेरे नाम पर जो विरासत नामा लिख दिया था वह कानूनदान मित्रों की राय में भारतीय विरासत के कानून के अनुसार वैध नहीं मालूम होता। पर अगर यह साबित भी हो जाए कि वह वैध है तो भी उसके सगे संबंधियों और मित्रों की अनुमति के बिना उनकी संपत्ति का उपयोग हिंदुस्तानी ग्रामोद्योगों के लिए करने की मुझे ज़रा भी इच्छा नहीं है। यद्यपि ये काम उन्हें अत्यंत प्रिय था और इसके लिए वह एक गुलाम की तरह काम करते करते वीरोचित मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो गईं। इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि स्वर्गीय तारा बहन की वह संपत्ति मेरे हाथ आ जाएगी जिसका कि वह अपने जीवन काल में किसी प्रकार का विनियोग नहीं कर गई हैं। पर अगर ऐसा हुआ तो उसे हाथ लगाने से पहले मैं उन तमाम वचनों या वादों की जांच करूंगा जो उन्होंने पश्चिम में किए और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। बैंक से उनके नाम पर आए हुए कई चेक मेरे पास पड़े हुए हैं जिनका भुगतान भी नहीं हुआ है। उनके परिवार के बहन भाइयों से जिनकी संख्या मैं देखता हूँ बहुत बड़ी है, मेरी ये सलाह है कि उनमें से जो सबसे नज़दीकी हों राज्य से इस संबंध का एक कानूनी अधिकार पत्र लेकर वह मेरे पास भेजें ताकि मैं और कुमारी मेरी बार हमारे पास रखी हुई तारा बहन की चीज़ें सौंप सकें। मेरे पास तो अनभुने चेक पड़े हुए हैं और मेरी बार के पास उनके कुछ छोटे मोटे जेवर हैं। हिंदुस्तान में आने पर अपनी ज़रूरतें उन्होंने इतनी कम कर दी थी कि शायद ही कोई ऐसी चीज़ बची हो जिसकी कोई कीमत आ सके। अपने जीवन काल में उन्हें जो कुछ मिला उन्होंने ग्राम सेवा के लिए मुझे दे डाला। उस स्वर्गीय उपकार शीला देवी से संबंध रखने वाली बातों के विषय में मेरे पास तो इतनी ही जानकारी है। आशा है यह उनके तमाम संबंधित लोगों के लिए काफ़ी होगी।

गांधी चर्चा में आप सुन रहे थे श्रीमती तारा बहन के बारे में गांधी जी के विचार। श्रोताओं, अगले अंक में हम आपको सुनवाएंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला।

गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। पहले ये संदेश।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शफकत अमानत अली की आवाज़ में। गीत लिखा है निरंजन अयंगर ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का है। फिल्म का नाम है माय नेम इज़ खान।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का गीत सुनिए शफकत अमानत अली, शंकर महादेवन और कैरलेसा की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद की फिल्म

0: गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
1: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनें जावेद अली, कीर्ति सगठिया और पूजा की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत यार रहमान का है, फिल्म का नाम है रांचना।

0: जावेद अली, कीर्ति सगटिया और पूजा की आवाज़ों में इरशाद कामिल का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत यार रहमान का था, फिल्म थी रांझणा।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में 10:30 पर फिर सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:44 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं संतोष दिवाकर। कार्यक्रम में पहले सुनिए

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: और श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। शनिवार 20 जून 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहिनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 17 जून 2026 यानी आज दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स इस प्रकार हैं। पहला फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए संतोष दिवाकर की आवाज में ये गजल।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे संतोष दिवाकर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेललाइन परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा की आशंका है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 42 किलोमीटर लंबी चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत चांपा और कोरबा के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी सड़क बूंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। यह रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 एमटी और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनेगा, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को सुदृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में अब से कुछ देर बाद अभनपुर से कुरूद के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ने आम लोगों से रेलवे लाइन से दूर रहने और अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ सीजन के लिए देश भर में की जा गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाए। श्री चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा या आसमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से पूरी तैयारी की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। सुंदर राजपी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप के बीच ड्यूअल ज्वाइंट डिग्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून के बीच आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान हुआ। ड्यूअल ज्वाइंट डिग्री समझौते के तहत दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और फ्रांस में अध्ययन का अवसर मिलेगा। छात्र आईआईटी भिलाई तथा इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियां अर्जित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन करने की अपील की है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान नदी, नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे छोटे तालाब और जलस्रोत जिनका संपर्क किसी भी नदी नाले से नहीं है उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना होते हुए दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और हल्की वर्षा होने की संभावना है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरवगढ़ पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2 लाख सीड बॉल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा की आशंका है वहां पहले से पूरी तैयारी की जानी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायवाली केंद्र है। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए पंडित देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग जौनपुरी। इसमें सुनिए दो गतें, विलंबित और द्रुत दोनों गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगति की है सती शंकर पांडा ने। तो लीजिए सुनिए पंडित देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग जौनपुरी।

पंडित देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग जौनपुरी अभी आप सुन रहे थे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए पंडित देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग भैरवी में एक गत जो तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगति की है सती शंकर पांडा ने।

पंडित देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग भैरवी अभी आप सुन रहे थे। तबले पर संगति की थी सती शंकर पांडा ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए कुमार सानू।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण की आवाज में नीलेश मिश्रा का लिखा गीत। फिल्म रोग के इस गीत की धुन बनाई है MM क्रीम ने।

चित्रपट संगीत के अगले गीत से पहले श्रोताओं एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार यानी 19 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा लाख लगाएं लाखों कमाएं, जीवन समृद्ध बनाएं। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 19 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद आइए अब आपको सुनवाएं राज 3 इस फिल्म का गीत जावेद अली की आवाज में। गीत और संगीत राशिद खान का है।

लीजिए अब सुनिए डोमिनिक और सिरजो की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत शंकर एहसान लॉय का है, फिल्म का नाम है रॉक ऑन।

0: दिलजीत दोसांझ और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत। संगीत शंकर एहसान लॉय का था। फिल्म सूरमा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए

0: भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन्डर लाइन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इसमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका और इजराइल के सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।

कार्यक्रम ईमेल भेज छत्तीसगढ़ी गीत सुनैया जम्मो संगवारी मन के कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीकार करो तारकेश्वरी के जय जोहार। संगियो आज के कार्यक्रम पर पहली

0: गीत हवे नवलदास मानिकपुरी और संगवारी मन की आवाज़ में और ए गीत ला सुनवाए खातिर ईमेल मिले है हमार ए संगवारी मन के पहरा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्र किरण बंछोर शिवाजी चौक कटनी ले अनिल ताम्रकार अमर ताम्रकार दिलीप वर्मा और संजय सोनी तखतपुर ले मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव बलौदा ले दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल और समृद्धि पटेल नारायणपुर ले दिनेश्वरी बंजारे मनीष कुमार बंजारे पीपरलोड सरगांव मुंगेली ले दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा चिरमिरी कुरासिया कालरी ले इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह और राम सहोदर भरदाकला साजा ले रोम कुमार साहू किरण साहू नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत शारदा पुष्पांजलि वर्मा अडार नांदघाट ले माखन और चांदनी वर्मा रसेड़ा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार संध्या कीर्ति कुमार डिकेश साहू धमनी राजिम ले दुष्यंत कुमार बंजारे आशीष कुमार बंजारे और जैसा कर्रा चरामा कांकेर ले असाडूराम निषाद खिलावन निषाद और ऋषभ निषाद त आप जमो संगवारी मन के पसंद में आवाज सुने जाए नवल दास मानिकपुरी और संगवारी मन के गाय एगी
1: रोटी खवैयान जी

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: अब सुने जाए पद्मलोचन जायसवाल और संगवारी मन के गाए गीत। पसंद करिए संगवारी मन ही। पलारी ले प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, बठेना पाटन ले परमेश्वर साहू, हेजल साहू और राजेश साहू, ठेठवार पारा कनेरी ले सनत कुमार यादव, अमलीडीह साजा ले किलेश्वर सिंह चौहान और मालती देवी चौहान, रानीगांव नगरी धमतरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, पहांदा पलारी ले नितेश कुमार, तनुजा ईशांत, लखनलाल देवांगन और सावित्रीबाई देवांगन, वडिंगखेड़ा पंजाब ले मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, मेचका सोंढूर नगरी ले भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा नाग, लिखिल नाग और तरुणदीप नाग, तेंदुभाटा मगरलोड धमतरी ले उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका, दिव्यांश भूपेश, शिवा निषाद, पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम ले दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया, जयकिशन, योगेश, वासु, हेमा, राधिका साहू, समडील नवापारा ले मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता। आप जम्मू संगवारी मन के पसंद में आवाज सुने जाए पद्मलोचन जायसवाल और संगवारी मन के गाए ए गीत।

पद्मलोचन जायसवाल और संगवारी मन के गाए एक गीत के बाद आवाओ अब सुने जाए राकेश तिवारी और संगी मन के गाए गीत। पसंद करे या संगवारी मन ही भीम खोज तरपोंगीले संतोष गुप्ता हितेश उमेश लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता फुलझर घटारानी गरियाबंदले योगेश्वर साहू डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान हर्षिता साहू नादिया गंडईले मोनिका पटेल सीमा मूलचंद आशीष पटेल आमा खोड़ोरा रेंगा खारले देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह दक्ष प्रिया औगीत सरगम नेताम गेंदा टोला बाजार चौक राजनांदगांव ले अंजलि योगिता बीरेंद्र कुमार गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता बघेरा दुर्गले संतोष नामदेव सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव बन बघेरा राजनांदगांव ले योगेश सारवा और आशा सारवा शहीद नगर खमतराई रायपुर ले हीरा साहू गणेश धाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलऊ दास जयदास देवेश

दास, धनवंतिन बाई औ मोतिन बाई मानिकपुरी, सिंगारपुर पहली मिटाले चिंताराम धुर्वे, कामिन चंद्रध्वज औ सानु धुर्वे, हथनीपारा भाटापाराले दुलारी बाई औ चोवाराम वर्मा, धरसीमा बस स्टैंडले छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अल्पना, अनुराधा यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुरले छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव बलदाऊ, राजेश्वरी आस्था, औमेघापारा ले रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक औ टेकलाल पटेल। आप जम्मू संगवारी मन के पसंद मा आवाज सुने जाए। राकेश तिवारी और संगवारी मन के गाए एक गीत।

राकेश तिवारी और संगवारी मन के गाए गीत के बाद आवाओ अब सुने जाए बैतल राम साहू और आशा साहू के गाए ए गीत। पसंद करके ईमेल भेजाइया संगवारी मन ही शांतिनगर भाटापारा ले पुनियाबाई नारायण यादू, धुर्रा बांधा भाटापारा ले प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, देहान बांधा बाजार राजनांदगांव ले हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू सरस्वती, प्यारे राम और परमानंद साहू, पोटियाकला दुर्गले संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू, खमारमुड़ा ले सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी गोस्वामी, शिवाय गिरी गोस्वामी और एकांशी गोस्वामी, भाटापारा ले दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम सौरभ रावत, बोगाटोला मोहला मानपुर ले इंदु कुमारी, तारामती मुनिंद कुमार सिन्हा, मालिक राम सिन्हा, सविता देवी और चांदनी सिन्हा, लोरमी ग्राम तिलकपुर ले चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मालती, मयंक मरावी, सहसपुर ले लोकेश कुमार, मोहित राम, सत्यम रामकिशन साहू, दुल्ली चंद छोटकू साहू और दुर्गेश साहू, बाजारपारा बेमेतरा ले भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लक्की सिन्हा, जवाहरनगर दुर्ग ले आरसी कांबड़े, करुणा उपुल कांबड़े, भूतकछार लोरमी ले दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक प्रीतम धनराज मरकाम, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और लच्छनपुर ले रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप जम्मू संगवारी बन के पसंद मा बैतल राम साहू और आशा साहू के गाए ए गीत।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले आप मन सुनत हवो अपन पसंद के कार्यक्रम। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। एमा आवो अब सुने जाए अमचिरी बाई और संगवारी मन के गाए गीत। पसंद करे या संगवारी मन है नयागंज बाट भाटापारा ले विष्णु साहू, पूरब वीरा, हर्ष कुमकुम, योगेश्वरी साहू, लोरमी ग्राम करुहा नार ले गोमती रजक और काजल रजक, रोहासी ले मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, कोंदला, उदयपुर, सरगुजा ले जीवधन सिंह पैकरा, कुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, उकलेश्वर सिंह, अडार नांदघाट ले राहुल गोपी वर्मा, कोहका भिलई ले उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल, चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविन्द्र और रौनक सेन, रिंगनी ले दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, भाटापारा ले पचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर प्रसन्त भृगु, विनय कुमार पाठक, सौंगा मगरलोड ले मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, हियांश कुमार चंदन, बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन, हसदा नंबर 2 ले कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू, धमदा ग्राम सुकरी कला ले अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल और सहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी चंद्रवंशी, आकाश, प्रतिभा, पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी। आप जम्मो संगवारी मन के पसंद मा आवाज सुने जाए अमचिरी बाई के गाए ए गीत।

अमचिरी बाई के गाए एक गीत के बाद आवाओ अब सुने जाए रामकुमार साहू और सुनी साहू के आवाज माँ ए गीत जिला पसंद करके ईमेल पठोइया संगवारी मन है नरगोड़ाले कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी गोस्वामी सौंगा धमतरीले कोमल सेन तोषण सेन विनायक सेन ढोडरी घोटिया मोहला मानपुरले महेश कुमार निषाद रंभा रानी निषाद निखिल कुमार नैतिक कुमार पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार निषाद टेकापार बालोदले चिंताराम यादव और रवि प्रकाश यादव भोरमदेव कोडरले कन्हैया सोनी बिसेलाल पटेल शुक्लाल पटेल और प्रशांत पटेल साकरा राजनांदगांव ले नारायण लाल साहू कुलवंतन देवी देवेंद्र प्रताप नेहा देवी मिलिंद कुमार प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू गंडई पंडरिया ले कन्हैया यादव निर्मला यादव चोवाराम यादव और दतरेंगी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी राहुल साहू आशीष टेमरे बंटी उन्द्रा वेद प्रकाश सहारे दादू उइके और अभिलाष करही भदर बालोद ले गीतिका गुड़िया लोचन विद्यार्थी शारदा निर्मल पुरुषोत्तम निर्मल पप्पू चंद्राकर सीमा और गीतेश भलेसर महासमुंद ले बलराम सेन इंदू सेन छगन सिन्हा और द्वारिका सिन्हा कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद पूर्णेन्द्र और साहिल चंद्राकर तेलंगाना निजामाबाद ले शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना और लोरमी ग्राम चचेड़ी ले जगदीश सिंह मरावी सावित्री मरावी चमन मरावी अमन और सुमित मरावी आप जम्मू संगवारी मन के पसंद में आवाज सुने जाए राम कुमार साहू और सुन्नी साहू के गाए ए गीत।

आव आप सुने जाए भगत साहू और संगी बन के गाए गीत पसंद करे या संगवारी मन है नेवई उत्तेले विक्की देवांगन उर्वशी जतिन जयंत कुनिका देवांगन लोरमी ग्राम चचेडीले मोहन सिंह मरावी सविता रिंजा तनुराही मरावी कंडई पंडरिया ले दरियानामल मोटवानी अनीता राजेश मुकेश मोटवानी खमरिया बिलासपुर ले साबित खान और धर्मेंद्र प्रजापति वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले शिवा यादव राज यादव चिंटू तरुण यादव बनियापारा धमतरी ले रामचंद सविता माखीजा स्वाति माखीजा महेश कुमार कुकरेजा संध्या कुकरेजा बाजार वार्ड महासमुंद ले भीष्मदास नर्मदा हिरमनी दीपक लक्ष्यदास सौंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन गजेंद्र कुमार चंदन देवरी भाटापारा ले फानेश्वर रजक उमेश रजक कन्नूलाल रजक और पुनेश्वर रजक सिनेमा लाइन भाटापारा ले राम कुमार सेन विक्की सेन भैंसमुंडी मगरलोड ले भागवत साहू पूर्वांशी साहू कुमारी साहू रोहासी ले डगेसर राम साहू नूतन साहू गौरव साहू घनश्याम साहू दतरेंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा उनोखेलाल वर्मा और परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचिनी मसिया तुषारणी मसिया और कुमेंद्र मसिया आप जम्मो संगवारी बन के पसंद में आवा सुने जाए भगत साहू और संगवारी बन के गाए एक गीत।

Oh, how about Absurd Day? नूतन और संगवारी मन के गाए ए गीत पसंद करे या संगवारी मन ही पलारी ले नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, बड़गा कोदवा गोडान ले श्याम से मरावी, राजकुमारी मरावी, रानी रजनी, राहुल पूजा मरावी, कुई ग्राम भंगी टोला ले ननका राम धुर्वे, जामन बाई धुर्वे, फिरत राम धुर्वे, मालती धुर्वे, इंदिरानगर भवरपुर ले राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा जगदीश देवांगन, बठेना पाटन लिए पलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद वर्मा, कोरासी भैंसा रायपुर ले पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुस्मिता और दीपिका साहू, सुंदरनगर बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन, लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा ले रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, अम्बागढ़ चौकी ले रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस औ रेहान, कर्मा चौक लोहारीडी कवर्दा ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा, खुशांत निशांत साहू औ बाघामोड़ा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री यशवर्धन औ यशस्वी देवांगन। आप जम्मो संगवारी मन के पसंद माँ आवो सुने जाए सुनील साहू, सुनील सोनी, नूतन औ संगवारी मन के गाए ए गीत।

संगी संगी हो अब बेरा हो गए है जाए के, पर जात जात सुनो ओ पता जेमा ईमेल करके आप मन सुन सकत हो अपन पसंद के छत्तीसगढ़ी गीत। ईमेल पता नोट करो, राय लोकगीत 36@gmail.com RAILOKGEET36@gmail.com। आओ अब सिरात है आज के ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम। जाए के पहले अपन ला बता दें आज के कार्यक्रम पर जम्मो गीत जोड़े रहीन बीरभान साहू। अब बीता देवो जम्मो संगवारी मन ला तारकेश्वरी के राम राम।

0: श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। ईडी ने भारतमाला और डीएमएफ घोटाले के सिलसिले में कल प्रदेश के 9 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान। और मुख्यमंत्री आज सूरजपुर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के साथ ही गरियाबंद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 42 किलोमीटर लंबी चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत चांपा और कोरबा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी सरग बुंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। यह रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 एमटी और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनेगा, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को सुदृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 9 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना भूमि मुआवजा मामले और जिला खनिज न्यास डीएमएफ फंड के उपयोग में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई। ईडी की टीमों ने रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में संबंधित ठिकानों पर दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति विवरण और डिजिटल साक्ष्यों की जाँच की। यह कार्रवाई भारतमाला हाईवे भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में आरोपी जयप्रकाश गांधी की गिरफ्तारी के बाद की गई। गांधी को 3 जून

को गिरफ्तार किया गया था। रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूछताछ के लिए उसे ईडी को रिमांड पर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर और गरियाबंद जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सबसे पहले रायपुर से सूरजपुर जाएंगे, जहां पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे गरियाबंद के लिए प्रस्थान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की मौजूदगी में सीएम साय दोपहर 3 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में 700 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं 4 बजे दर्रीपारा ग्राम में आयोजित आदिवासी समाज के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और नवनिर्मित कचना गोंडवाना भवन का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। सुंदरराज पी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। कोरिया जिले के कटगोड़ी में रेत खनन को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने भाजपा नेता के 4 पहिया वाहन में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही सरगुजा रेंज के आईजी सहित अन्य पुलिस अमला रात में ही मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2 लाख सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग ने सभी नागरिकों, प्रबुद्धजनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। प्रदेशवासियों को जल्द ही चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने संकेत दिए हैं कि अगले 48 से 72 घंटों के भीतर राज्य में मानसून का आगमन होने जा रहा है। हालांकि मानसूनी तंत्र के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश या तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। ईडी ने भारतमाला और डीएमएफ घोटाले के सिलसिले में कल प्रदेश के 9 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान और मुख्यमंत्री आज सूरजपुर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के साथ ही गरियाबंद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।

एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर।

0: झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ

0: ने देश प्रेम की कहानियां सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
1: अच्छा।
0: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
1: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
1: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता। नहीं, कुछ।
2: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
4: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
6: नहीं। और नहीं हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ,

0: आत्मा की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
2: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
3: मंगल पांडे
4: जिंदाबाद,
3: मंगल पांडे
4: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
5: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
6: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
2: अरेस्ट करो!
5: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
6: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Come, Baldeco, Tikona Mantahai, Durant, Hospital Pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है।

0: उन पर फिल्में बनाई गईं। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैल बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल मंगल मस्ती में चूर चलल पहला बागी मशहूर चलल गोरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल गोली के तुरंत निशान भैल जननी के भेंट परान भैल आजादी का बलबेदी पा मंगल पांडे बलिदान भैल जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ हम नाश्ता कर लेंगे पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ
6: लो देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता यही ले आओ दीदी। ठीक है मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा। ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ कौन आप लोग कौन कहिए किससे मिलना है? अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?
9: ए लड़की रास्ते से हट जा।
6: क्या काम है? ठहरो ठहरो मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट।
6: माँ
8: ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
6: अरे
9: मैं बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
6: हट
9: रास्ते से।
6: क्या हुआ? देखो जल्दी आओ।
5: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
8: ए शोर मत मचा जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
6: हाँ मेरी माँ को छोड़ दो।
8: ये चाकू देख रही है ना?
5: छोड़ दो
6: मुझे मत मारो। कुछ मत
5: चाबी मुझे नहीं मालूम।
8: जल्दी
5: याद नहीं कहाँ रखी है।
9: बहाने बाजी करती है जल्दी से।

0: दे दे वरना गोली मार दूंगा।
1: अरे, अरे मेरे माँ को छोड़ो,
2: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
0: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
1: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
4: देवेंद्र।
2: हाँ दीदी।
4: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
2: अच्छा,
4: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
2: अच्छा।
4: हेलो।
5: हाँ बेटा बोलो।
4: पापा।
5: हाँ
4: पापा।
5: हाँ बोलो बेटा।
4: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुस आए हैं।
5: कौन घुस आए?
4: माँ को बहुत मार रहे हैं।
5: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
4: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
4: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
6: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
8: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
7: देखो ना, सबकी जान
8: बहादुर है मेरी बच्ची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं जगजीत सिंह। कार्यक्रम में पहले सुनिए नदीम परमार की रचना जगजीत सिंह के स्वर में।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए साहित्य कबीर की रचना जगजीत सिंह के स्वर में।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे जगजीत सिंह। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार, दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक

0: ये प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। आइए सुने चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में हिंदुस्तानी फिल्म का गीत। PK मिश्रा की रचना है और संगीत AR रहमान का है।

अब एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी शुक्रवार 19 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा लाख लगाए, लाखों कमाए, जीवन समृद्ध बनाए। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कीट विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 19 जून 2026 को 11:30 पर होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का

इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए हमसे है मुकाबला फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं पीके मिश्रा ने, संगीत ए आर रहमान का है और आवाजें हैं ए आर रहमान नोएल जेम्स की।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में दिल ही दिल में फिल्म का गीत। महबूब की रचना है, संगीत ए आर रहमान का है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आइए पहले आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले लीड्स में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुन सकते हैं आज शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, शाम 7 बजे से रात 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर सुनिएगा नाटक नाम का भीख। लेखक श्री पृथ्वीनाथ शर्मा और निर्देशक होंगे श्री चिरंजीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी रोजाना की तरह शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस। साथ ही होगा क्रम पत्र मिला और यादें।

चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे और दोपहर 2:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है नाटक नाम की भीख। लेखक श्री पृथ्वीनाथ शर्मा और निर्देशक है श्री चिरंजीत।
1: ये आकाशवाणी है, नाम की भीख। आज प्रस्तुत है पृथ्वीनाथ शर्मा का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं ये नाटक, नाम की भीख।

0: कितना सुहाना उजला दिन है ये। होटल की खिड़की से ये सुनहरी किरणें ऐसे आ रही हैं मानो सखी दाता ने भिखारी की झोली सोने के तारों से भर दी हो। वो सामने वाली सड़क पर कोई भिखारी गा रहा है। सुबह सवेरे कितना अच्छा लग रहा है उसका ये गीत। मैं भी दूर पूर्वी अफ्रीका से यहाँ दिल्ली आई थी भिखारिन बनकर नाम की भीख मांगने। सखी दाता ने मेरी झोली में अपना सर्वस्व डालकर मुझे निहाल कर दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कौन। ओ इला, कहो बेटी। अरे इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही हो?
1: यूं ही जरा बाहर
0: घूमने।
1: मम्मी रात डैडी कब गए?
0: याद नहीं।
1: मेरा ख्याल है वो यहाँ होटल से अपने घर काफी रात गए, शायद कोई 1 बजे गए थे
0: शायद। लेकिन इला, इला तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
1: यूं ही। अच्छा मैं चलती हूँ।
0: आज सुबह सवेरे इस इला को क्या हुआ? ये मेरी बेटी मुझसे कैसे बातें कर रही थी, मुझे कैसे देख रही थी, मानो मैंने कोई अपराध किया हो। लेकिन

0: लेकिन मैं तो इसी की खातिर पूर्वी अफ्रीका से चलकर दिल्ली आई थी, ताकि ये अपने मन पसंद वर से शादी कर सके। शादी की राह में जो अड़चन है वो दूर हो जाए, लड़के और उसके माँ बाप को विश्वास हो जाए कि इला का बाप दिल्ली का एक संभ्रांत व्यापारी है और उससे मेरी बाकायदा शादी हुई थी। हाँ, इला के ही खातिर 20 बरस बाद दिल्ली आई थी। आने के बाद जो कुछ हुआ है या जो होने जा रहा है उसके लिए मैं दोषी नहीं। ये कैसी हंसी? ये कौन मुझ पर हंस रही है?
1: तुम पर मैं हंस रही हूँ। मैं तुम्हारी अंतरात्मा। तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो लेकिन मुझे नहीं। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम ही दोषी हो।
0: बिल्कुल नहीं। 20 बरस पहले जब मैं इनकी माँ के कारण इनसे अलग हुई थी तो हमेशा के लिए ऐसा नाता तोड़ा था कि मैंने अपना नाम तक बदल लिया था। मैं शारदा शंकर से सुनंदा बन गई थी और अकेली दूर पूर्वी अफ्रीका में जा बसी थी। अब जब 20 बरस के बाद मैं अपनी बेटी के खातिर वापस यहाँ आई

0: जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम ही दोषी हो।
1: बिल्कुल नहीं। 20 बरस पहले जब मैं इनकी माँ के कारण इनसे अलग हुई थी तो हमेशा के लिए ऐसा नाता तोड़ा था कि मैंने अपना नाम तक बदल लिया था। मैं शारदा शंकर से सुनंदा बन गई थी और अकेली दूर पूर्वी अफ्रीका में जा बसी थी। अब जब 20 बरस के बाद मैं अपनी बेटी की खातिर वापस यहाँ आई तो मैंने सोचा भी नहीं था कि
0: क्यों झूठ बोलती हो। याद करो वो क्षण जब तुम पहली बार अपने भूतपूर्व पति शंकर देव के घर गई और जब तुम्हारी पहली भेंट अपनी सौत अनुराधा से हुई तो तुम्हारे मन पर क्या बीती थी, और फिर जब शंकर देव से मिली तो।
2: अरे तुम शारदा?
1: ओह मैं अब शारदा नहीं, सुनंदा हूँ।
2: खैर तुम अचानक कहाँ से उतर पड़ी?
1: उतरी कहाँ, मैं तो यहाँ आने को स्वर्गारोहण कहूंगी।
2: वो कैसे?
1: स्वर्ग का कौन सा सुख आपके सुखधाम में नहीं, इसीलिए सोचती हूँ कि मेरा यहाँ आना उचित है भी या नहीं।
2: ऐसा क्यों सोचती हो?
1: 20 वर्षों के बीते बिसरे अतीत को जगाने का मुझे अधिकार ही क्या है? अगर मजबूरी न होती तो ये ढिठाई न कर पाती।
2: मजबूरी कैसी?
1: 20 वर्ष पहले मैं शारदा शंकर थी, जब अलग हुई तो मैं तुम्हारा वो नाम त्याग कर सुनंदा बन गई। अब अचानक तुम्हारे त्यागे हुए उसी नाम की फिर से जरूरत पड़ गई है।
2: उस नाम को त्यागा क्यों?
1: क्रोध के आवेश में, आदर्श से भ्रष्ट होकर नहीं।
2: आज भी तुम वही भावुक पहेली हो जिसने एक दिन उषा का प्रकाश मेरे चारों ओर बिखरा दिया था।
1: छोड़िए पुरानी बातें, तो क्या नाम की भीख आप मुझे देंगे?
2: उसकी अचानक जरूरत क्यों आ पड़ी?
1: अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए, बेटी के विवाह के लिए।
2: बेटी? वो इला ना, वो तो बहुत बड़ी हो गई होगी, कैसी लगती है?
1: वैसी ही जैसे 21 बरस की एक लड़की लग सकती है, देखेंगे।
2: क्या तुम्हारे साथ आई है?
1: हाँ, उसे होटल में छोड़ आई हूँ।
2: ओ तो माँ बेटी होटल में ठहरी हो, चलो मैं इला को देखना चाहूंगा।
1: लेकिन आप अभी तो न चल सकेंगे, आपको अभी क्लब जाना है आपकी।
2: अच्छा तो तुम अनुराधा से मिल चुके हो?
1: आते ही पहले उन्हीं से भेंट हुई थी, उन्हीं ने बताया कि आपको।
2: खैर तुम इतने दिन कहाँ रही?
1: पूर्वी अफ्रीका में।
2: वहाँ क्या करती रही?
1: मजदूरी तो नहीं की, लेकिन मेहनत से नहीं बच सकी।
2: मुझ पर क्रोध तो बहुत आता होगा।
1: कुछ दिन अवश्य, लेकिन उसके बाद नहीं।
2: क्या इसलिए फिर मेरी याद ही भूल गई?
1: इसके सिवा चारा ही क्या था। लेकिन आज सब कुछ फिर नेत्रों के सामने नाचने लगा है।
2: ये मेरा सौभाग्य है।
1: सौभाग्य है या दुर्भाग्य, इसके निर्णय में तो समय लगेगा।
2: क्यों?
1: क्योंकि दबी हुई चिंगारी फिर से सुलग कर सुंदर दीप शिखा का रूप भी धारण कर सकती है और जलाकर राख कर देने वाली लपट भी बन सकती है। इसलिए।
2: इसलिए क्या?
1: यही कि अब हमें राख के ढेर में से चिंगारी ढूंढने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
2: क्या हम दोनों राख का ढेर हो चुके हैं?
1: आप नहीं, मैं। अरे ये भी हम क्या कहानी ले बैठे, आपको तो क्लब जाना है। तो इनसे भेंट हो गई।
2: आओ अनुराधा, तुम तो इनसे मिल चुकी हो।
3: हाँ, लेकिन परिचय अब हुआ है। आप शारदा बहन हैं?
1: शारदा नहीं, सुनंदा। हाँ तो कल आपको किस समय फुर्सत होगी?
2: कल शाम को इसी समय ठीक रहेगा।
1: अच्छा तो मैं चलती हूँ।
2: कल लड़की को एला को जरूर साथ लाना।
0: और वहाँ से चलते समय तुम मन ही मन खुश हुई थी कि तुम अपनी सौत अनुराधा के मन में संदेह का बीज बो चुकी हो। और फिर दूसरे दिन तुम इला के साथ शंकर देव की कोठी में पहुँची, अपने होने वाले दामाद ज्ञान वर्मा और उसके माता पिता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हारा शंकर देव से बाकायदा विवाह हुआ था, और उसी विवाह के परिणाम स्वरूप इला पैदा हुई।
4: नमस्ते डैडी।
2: अरे इला बेटी, आओ आओ आओ मेरे पास बैठो।
4: अरे शंकर, ये तो बिल्कुल तुम पर गई है, कौन कह सकता है कि तुम्हारी बेटी नहीं।
1: ज्ञान और उसके माँ बाप को विश्वास हो जाए तो।
2: बेटी के लिए तुमने वर अच्छा चुना है।
1: तो क्या आप ज्ञान से मिल चुके हैं?
2: हाँ, कल तुम्हारे जाने के बाद वो यहाँ आया था।
4: हमें तो उसने नहीं बताया।
2: खैर मुझे उसने सब कुछ बता दिया है। उसके माँ बाप भी पूर्वी अफ्रीका के उसी शहर में रहते हैं जहाँ तुम माँ बेटी रहती हो। इस रिश्ते को पक्का करने के लिए वो भी दिल्ली आए हुए हैं। ज्ञान लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था और इला लंदन यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र की डिग्री के लिए पढ़ रही थी। दोनों वहां मिले, प्रेम हुआ और
1: दादी। लेकिन ज्ञान अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं?
2: वो

0: क्या मतलब?
1: वो तुम दोनों से पहले ही यहाँ पहुँच गया था।
0: कमाल है, हम उसे होटल में ढूंढते रहे और वो यहाँ पहले ही पहुँच गया। लेकिन उसके साथ तो ये तय पाया था कि वो हमारे साथ यहाँ आएगा। कहाँ है वो?
1: साथ वाले कमरे में बैठा है और उसके माँ बाप कोठी के पास ही एक रेस्तरां में इंतजार कर रहे हैं।
0: लेकिन ज्ञान का यह अजीब व्यवहार, ये उतावलापन मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों हिला?
1: यदि आप चाहें तो मैं उत्तर दे सकता हूँ।
0: कहिए।
1: लगता है तुमने अफ्रीका में बहुत सा धन अर्जित किया है।
0: हाँ, थोड़ा बहुत किया है।
1: और वो तुमने अपनी इकलौती लड़की इला के नाम कर दिया है।
0: हाँ।
1: तो मेरे विचार में ज्ञान का अजीब व्यवहार उसी धन को पाने की उतावली के कारण है।
0: बिल्कुल गलत, वो रुपए की लालच से एकदम अछूते हैं।
1: हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ बेटी, लेकिन मेरा अनुमान ठीक भी हो सकता है। क्यों ना मेरी बात को कसौटी पर कस लिया जाए।
0: कैसे?
1: मैं ज्ञान को अभी बुलाता हूँ। मैं उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति रखूंगा जिसका अनुमोदन तुम और तुम्हारी माँ को करना होगा। मंजूर?
0: मंजूर।
1: भोला, साथ वाले कमरे में जो साहब बैठे हैं उन्हें यहाँ भेज दो। आइए मिस्टर ज्ञान वर्मा।
2: नमस्ते माँ जी।
0: आप तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गए।
2: आपने देर जो कर दी इसीलिए।
1: खैर कोई बात नहीं, बैठो बेटा। हाँ हाँ, तुषारदा? नहीं नहीं, सुनंदा, तुम इन्हें कुछ दिखाना चाहती हो?
0: ये फोटो है आपका और मेरा, आप पहचानते हैं इसे?
1: अरे क्यों नहीं, ये तो हम दोनों के विवाह के अवसर पर खींचा था, जब तुम सुनंदा नहीं शारदा थी।
0: अब ये फोटो आप ज्ञान जी को पकड़ा दीजिए।
1: लो बेटा।
2: अरे, अगर आप ये फोटो वहीं अफ्रीका में दिखला देती तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता।
0: नहीं नहीं, यहाँ आना आवश्यक था। वहाँ अफ्रीका में आप ये तो मान जाते कि मैं कभी शारदा थी, लेकिन ये मेरे पति है, ये बात शायद ये बेजबान फोटो न बता सकता।
3: और इला इनकी ही बेटी है, ये आपको बाप बेटी की एक सी शक्लों से पता चल गया होगा।
0: धन्यवाद बहन। क्यों ज्ञान जी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना?
2: देखिए, मुझे तो कभी संदेह था ही नहीं, मैं तो केवल अपने माता पिता की तसल्ली करना चाहता था।
0: आप, क्या उनका संदेह दूर हो जाएगा?
2: अवश्य। अच्छा तो मैं चलूं?
1: आप शायद अपने माता पिता के पास जा रहे हैं, जरा एक मिनट के लिए रुक जाइए, एक निवेदन मेरा भी है।
2: हाँ हाँ, आज्ञा कीजिए।
1: अब चूंकि बात साफ हो गई है और संयोग वर्ष आपके माता पिता भी यहीं हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके साथ सेला का विवाह अफ्रीका लौटने से पहले यहीं दिल्ली में हो जाए।
2: क्यों?
1: क्योंकि मैं स्वयं कन्यादान करना चाहता हूँ।
2: लेकिन
1: रुक क्यों गए, कहिए।
2: देखिए, मैं अभी अभी लंदन से बैरिस्ट्री करके आया हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि विवाह से पहले मैं अपनी प्रैक्टिस जमा लेता तो ठीक रहता।
1: वो तो विवाह के बाद भी जम सकती।
2: हाँ, लेकिन हम सोच रहे थे कि अपनी कोठी बन जाने पर ही वकालत का काम शुरू किया जाए। और
1: आप कोठी बनवा रहे हैं?
2: मैं कहाँ।
1: तो आपके पिताजी?
2: जी नहीं। देखिए, इलाजी की बातचीत से मेरी ये धारणा बनी थी कि ये मुझसे विवाह करके एक शानदार कोठी में रहना चाहेंगी और उस कोठी का प्रबंध इलाजी भारत से लौटते ही कर देंगी।
0: अच्छा।
2: और उस कोठी में ही मेरी कीमती कानूनी पुस्तकों की लाइब्रेरी का प्रबंध भी हो जाएगा।
0: और वो प्रबंध भी मुझे ही करना होगा।
2: हाँ, और पिताजी का ख्याल था कि अगर विवाह से पहले मेरे नाम बैंक में कुछ पैसे का प्रबंध।
0: ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं विवाह से पहले ऐसा कोई प्रबंध न कर सकूंगी।
2: क्या?
1: तो ज्ञान जी, ऐसे हालात में आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार होगा कि आपका इला से विवाह अफ्रीका लौटने से पहले यहीं दिल्ली में हो जाए।
2: देखिए, इस संबंध में मुझे अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी।
1: हाँ, आपने बताया था कि आपके माता पिता पास ही एक रेस्तरां में बैठे, अभी जाकर उनसे पूछाइए।
2: हाँ, पूछाता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा।
1: मेरा अनुमान है कि वो अब नहीं आएगा। क्यों मिला? ज्ञान ने तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी।
0: मुझे उससे ऐसी आशा नहीं थी। विवाह से पहले ऐसी हालत है तो विवाह के बाद पता नहीं क्या करते। अब इनके यहाँ संबंध करना ठीक नहीं होगा। क्यों इला?
4: मम्मी, तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसे स्वार्थी आदमी का मुंह तक देखना नहीं चाहती।
3: बेटी, जरा धीरज से काम लो।
1: लगता है कि आप दोनों की लंबी यात्रा व्यर्थ ही गई।
0: नहीं नहीं, इसी बहाने आप सबके दर्शन हो गए और आपकी चरण रज फिर मस्तक को लगा पाई हूँ। खैर, अब हमें लौटने की तैयारी करनी होगी।
1: मैं समझता हूँ कि यदि तुम कुछ दिन और यहाँ ठहर जाती तो यहाँ इलाके लिए वार्ड ढूंढ लेते।
3: लेकिन इन्हें वहाँ अफ्रीका में अपनी जायदाद की देखभाल भी तो करनी होगी।
0: आप ठीक कहती हैं अनुराधा बहन, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वर यहाँ शायद आसानी से मिल जाए।
3: इस कर्तव्य का पालन तो हम भी कर सकेंगे।

0: धन्यवाद, पर आपको ये कष्ट देना उचित न होगा, इसलिए मैं सोचती हूँ हम थोड़े दिन यहाँ रुके जाएं।
1: और इस तरह तुमने दिल्ली में कुछ और दिन रुकने का बहाना ढूंढ ही लिया। लेकिन तुमने महसूस किया होगा कि अनुराधा तुम्हारी बात को समझ गई थी, इसीलिए वो चाहती थी कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। और कल रात शंकर देव ने अनुराधा से हुए झगड़े का पूरा हाल तो तुम्हें सुनाया ही था।
0: शंकर, मैं समझती हूँ कि उनका अधिक देर दिल्ली में रुकना उनके अपने प्रति ही नहीं, हमारे प्रति भी अन्याय होगा।
2: हमारे प्रति अन्याय?
0: हाँ, अब एक बात कहूँ?
2: कहो।
0: दबी हुई आग को जगाने की कोशिश न करो, न दया के नाम पर और न प्रेम के बल पर।
2: तुम्हारे मन में अकारण ही संदेह मंडराने लगा।
0: मैं अंधी और बहरी नहीं हूँ। कल से इस कोठी और उस होटल के बीच टेलीफोन का जो संबंध जुड़ गया है वो मुझसे छिपा नहीं है।
2: बेकार में बात का बतंगड़ न बनाओ।
0: शंकर, उसके प्रति आज तुम्हारे मन में जो कोमल भावनाएं उठ रही हैं, उन भावनाओं को उसकी सौत लाने से पहले यदि अपने मन में लाते तो उचित था।
2: वो ईर्ष्या की भी एक सीमा होती है।
0: एक चमचमाते महल की ओर कदम उठाने से पहले ये ना भूल जाना कि यहाँ तुम्हारी फूलों और लताओं से सजी हुई सुंदर झोपड़ी भी है। ऐसी झोपड़ी जिसे बनाने और संवारने में किसी ने जीवन भर तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाया है, तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों का बल दिया है। अब उस चमचमाते महल का मुंह इस झोपड़ी को जलाकर राख कर देगा।
2: तुम मुझे इस तरह डरा नहीं सकती। आखिर वो भी मेरी पत्नी है, मैंने उसके प्रति अन्याय किया है।
0: अन्याय? ये मत भूलना शंकर कि अन्याय के ऊपर एक और अन्याय करने से अन्याय न्याय नहीं बन सकता।
3: और अब जो हो रहा है उससे लगता है कि अनुराधा की आशंका निराधार नहीं थी।
0: ठीक है, लेकिन उन पर जितना अनुराधा का अधिकार है उतना ही मेरा भी है। मेरे साथ उन्होंने अन्याय किया था, अब अगर वे खुद ही उस अन्याय का प्रतिकार कर रहे हैं तो अनुराधा को झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। जो कुछ हुआ है हो रहा है। हैं? इतने सवेरे कौन आया? शायद इला घूमकर लौट आई।
4: अरे आप बड़ी जल्दी लौट आए, रात को 1 बजे तो गए थे।
2: सो नहीं सका। इला कहाँ है?
4: अभी अभी घूमने निकली है। क्या अनुराधा से कोई झगड़ा हुआ?
2: झगड़ा तो नहीं, लेकिन साफ साफ बात अवश्य हो गई।
4: क्या बात हुई? क्या वो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी थी?
2: हाँ।
4: फिर?
2: मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अपने हृदय की पुकार का दमन नहीं कर सकता। मैं
4: एक आध दिन और रुक जाते तो शायद ठीक रहता। खैर, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई?
2: यही कि उसकी खीज और बढ़ गई, फिर वो रोने लगी और
4: वो भूल गई कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ था।
2: अन्याय मैंने किया था और अब उसका दंड भी मुझे ही भोगना होगा। शारदा, अब मैंने जो निश्चय किया है वो पक्का है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा क्या निश्चय है?
4: मेरा निश्चय? मैं तो जन जन की तुम्हारी दासी हूं।
2: मेरी शारदा, शारदा रानी।
4: ये कौन आया?
2: देखता हूं। अरे इला,
5: नमस्ते डैडी।
2: कराई सर
5: जी, आज आप ही घर से जल्दी निकल आए?
2: हाँ, एक जरूरी फैसले के बारे में सलाह करनी थी।
5: हो गया फैसला?
2: हाँ।
5: क्या है आपका फैसला?
2: ये कि अब मैं तुम दोनों के साथ अफ्रीका चलूंगा।
5: और यहाँ का घर?
2: वो अनुराधा और उसके दोनों बच्चों के पास रहेगा।
5: और उनकी देखभाल कौन करेगा?
2: अनुराधा स्वयं। मेरी यहाँ की जायदाद काफी है।
5: डैडी, आपने ये गलत फैसला किया है।
2: बेटी, ये क्या कह रही हो?
5: डैडी, यदि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहूँ तो आप सुनेंगे?
2: कहो।
5: जो आपने 20 साल पहले फैसला किया था वो अन्याय था, और अब जो आप करने जा रहे हैं वो उससे भी बड़ा अन्याय है। इसलिए?
2: इसलिए क्या?
5: इसलिए मैंने भी एक फैसला किया है।
2: वो क्या?
5: आप और मम्मी अफ्रीका चाहिए, मैं यही दिल्ली में रहूंगी।
2: क्या?
4: क्या? लेकिन नीला, तुम यहाँ दिल्ली में कहाँ रहोगी?
5: अपनी दूसरी मम्मी के पास।
2: क्या, अनुराधा के पास?
5: हाँ।
4: लेकिन क्यों?
5: माता पिता द्वारा पैदा की हुई उलझन को शायद सुलझा सकूं।
2: बेटी, ये उलझन तुम्हारे सुलझाए ना सुलझ सकेगी। जरा हमारी ओर देखो।
5: देख

0: रखी हूँ और आपसे ही प्राप्त स्फूर्ति मुझे रास्ता दिखा रही है।
1: अनुराधा, तुम्हें अपने पास रखने को तैयार?
0: जी हाँ, मैं अभी घूमने नहीं, उन्हीं से मिलने गई थी।
2: क्या तुम्हारी अनुराधा मम्मी मुझ पर बहुत नाराज है?
0: नाराज नहीं, आश्चर्यचकित है। मम्मी, आपने खुद जो मुसीबत झेली उसे में आप उन्हें क्यों धकेल रही हैं? ओह, मुझे रह रहकर इस बात पर ग्लानि हो रही है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वही अब डैडी के दूसरे बच्चों कुमुद और रमेश के साथ होने जा रहा है। जैसे मैंने पिता का प्यार खोया था वैसे ही कुमुद और रमेश भी खोने जा रहे हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि
1: बेटी, भावुकता के आवेश में आकर जो कुछ सोचा जाए किया जाए वो ठीक नहीं होता।
0: जानती हूँ, आज भावुकता के विरुद्ध एक बवंडर छेड़ दिया गया है
1: बेटी।
0: लेकिन मैं मानती हूँ कि भावुकता खोकर मनुष्य मानवता ही खो देता है। खैर, हाँ मैं चलूंगी।
2: कहाँ?
0: अपने नए घर। मम्मी, कुछ कपड़े मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, मेरा बाकी सामान होटल से उधर भिजवा देना।
2: ओ शंकर, मेरा साहस मुझे छोड़ रहा है।
1: शारदा, बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते।
2: बच्चों को छोड़ो, लोग क्या कहेंगे?
1: आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी हम चलेंगे उनकी आलोचना का रूप एक ही होगा।
2: क्या?
1: हमारा उपहास। इसलिए जग का भय हमें त्यागना होगा। अगर तुम्हारी अपनी आत्मा।
2: आप कौन आया?
1: देखता हूँ। अरे अनुराधा, तुम?
2: अनुराधा,
1: याद है इला को ढूंढ?
0: नहीं, वो तो मुझे अभी जाते जाते मिली थी।
1: उसको तुमने ठीक प्रेरणा नहीं दी।
0: मैंने उसे प्रेरणा दी है, ये तुमने कैसे मान लिया? खैर, उसने जो फैसला किया है उसका मैं कोई अनुचित लाभ नहीं उठाऊंगी, ये मैं आप दोनों को विश्वास दिलाती हूँ। दरअसल अब मैं एक नया प्रस्ताव लेकर आप दोनों के पास आई हूँ।
1: कैसा प्रस्ताव?
0: प्रस्ताव ये है कि आप और सुनंदा बहन अब यहीं रहें।
1: यहीं?
0: हाँ, यहीं अपने घर में, क्योंकि मैंने वो घर छोड़ने का निश्चय कर लिया है।
1: क्यों?
0: बहन सुनंदा इस घर से गई थी अपनी संतान साथ लेकर, लेकिन मैं ये कृपा भी नहीं चाहूंगी। आपके यहाँ जैसे अकेली आई थी वैसे ही अकेली चली जाऊंगी।
1: नहीं नहीं,
2: ये मुझे शायद दंड देना चाहती।
0: नहीं बहन, नहीं, आपका दोष ही क्या है? 20 वर्ष तक मैंने मिलन सुख का भोग किया और आपको विरह की यातना झेलनी पड़ी। अब आपको कम से कम उतने ही वर्ष मिलन सुख और मुझे मेरा यातना मिलनी चाहिए।
1: देखो अनुराधा, यदि तुम समझती हो कि इस तरह की धमकी से तुम मेरे फैसले को बदल सकोगी तो ये तुम्हारी भूल है।
0: ये कोई धमकी नहीं है शंकर, मैं स्वेच्छा से जा रही हूँ। भगवान करे आप दोनों का पुनर्मिलन सुखमय हो।
1: अनुराधा सुनो, अनुराधा, अनुराधा
2: चली गई। लगता है ये अपना संतुलन खो चुकी है। ओह, कोई अनिष्ट न हो जाए। जाइए, उसे रोकिए।
1: उसे रोकने की जरूरत नहीं, वो निश्चय ही घर गई है।
2: नहीं नहीं, वो घर नहीं जाएगी। उसकी आंखों से जो चिंगारियां फूट रही थी वे कोई और ही संकेत दे रही थी। यदि उसने कुछ कर लिया तो हमारी भावी जीवन की योजना टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आप जल्दी जाकर उसे रोकिए। चाहिए, चाहिए ना।
0: क्या कहा? अनुराधा कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई।
1: हाँ।
0: ओह, मुझे जिस दुर्घटना की आशंका थी।
1: वो अस्पताल में है, इला भी वहीं पर है। आओ, तुम भी चलो मेरे साथ।
0: नहीं, मैं न जा सकूंगी।
1: क्यों, अनुराधा से डरती हो?
0: अनुराधा से नहीं, मैं इला से डरती हूँ। ओह, उसके नेत्रों से फूटने वाली वो मूक आलोचना मेरी प्राण ले लेगी। आप जाइए, जल्दी जाइए अनुराधा के पास। आपकी यहाँ नहीं, वहाँ जरूरत है।
1: अच्छा, मैं जल्दी लौट कर आता हूँ। तुम यहीं होटल में रहना, कहीं जाना नहीं।
0: बैरा, बैरा।
3: जी मैम साहब।
0: मैनेजर साहब से कहो मेरा बिल तैयार कर दें, मैं अभी आकर हिसाब चुकाती हूँ। और हाँ, जल्दी से एक टैक्सी भी मंगवा दो।
3: मैम साहब, आप जा रही हैं?
0: हाँ, ये लो बख्शीश। अच्छा, जल्दी से टैक्सी मंगवाओ।
3: बहुत अच्छा।

0: ఉపయం సార్.
1: यही है मेरी नियति. जो सपना देखा था उसे हमेशा हमेशा के लिए भुलाना होगा. अफ्रीका ही तो लौटना होगा और जा ही कहां सकती हूं. हाँ, मुझे अकेली ही लौटना होगा. आई थी तो कम से कम बेटी का सहारा था. आज वो भी गया. खूब नाम की भीख मिली मुझे.

0: नाम की भीख। अभी आप पृथ्वीनाथ शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे चिरंजीत। ध्वनि संयोजन सुदर्शन कुमार का था और तकनीकी सहयोग आरसी पांडे का। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे मीना विलियम्स, सरल नांगिया, श्याम अरोड़ा, नीरज शर्मा, कृष्ण कुमार नरूला और शर्मिला मलकानी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंग्ले लीड्स में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुन सकते हैं आज शाम 6:30 से 6:45 तक, शाम 7 से रात 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के

बद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए जीरो फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत अजय अतुल का है और आवाज है अभय जोधपुरकर की।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ए एम तुराज का लिखा और संजय लीला भंसाली के संगीत से सजा गीत शिवम पाठक के स्वर में। फिल्म का नाम है पद्मावत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की

0: बात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रम्प भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात

0: $53 तक पहुंच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में

0: 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए जब जब फूल खिले फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टर बोल रहा हूँ सर।

0: घुल मिल जाती हैं।
1: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है,
2: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना दो कलियां फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत रवि का था।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जत हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: यादों की बारात, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर से। कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोंसले के स्वर में तीसरी मंजिल फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई

कार्यक्रम में अब सुनिए ये वादा रहा फिल्म का गीत। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलशन बावरा की रचना है और संगीत आरडी बर्मन का है।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी इस सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। सांध्यकालीन सभा के स्थानीय प्रसारणों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार

अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 22 ओवर में 2 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका लेकर कार्यक्रम मन भावन, जहां आपके मनपसंद गीत हम सुनाते हैं आपको और आप हमें भेजते हैं प्यार भरे मैसेजेस। जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि कई श्रोताओं ने तो ऑलरेडी हमें बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए हैं और जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ, अगर आप अपना फेवरेट गाना, मनपसंद गाना सुनना चाहते हैं तो आपको बस करना इतना है कि व्हाट्सएप पर जाइए और अपना नाम और जिस फिल्म से आप जो गाना सुनना चाहते हैं वो हमें टाइप करके भेज दीजिए। नंबर है 9868868753। मैं दोहरा देती हूँ 9868868753। और गाना शुरू करने से पहले मैं कुछ श्रोताओं के मैसेजेस भी पढ़ लेती हूँ। तो हमें जलालाबाद वेस्ट से लिखा है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता आहूजा ने ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अभी हमें मैसेज आया है ऋतु बत्रा, जुगल बत्रा, हर्षिता बत्रा और क्रिश दिल्ली के गोपाल पार्क से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये हमें भेजा है बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा ने ये हमें भेजते हैं पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और कई दूर दूर से हमें जो है मैसेज आ रहे हैं, आपके प्यार जो है भेज रहे हैं आप हमें इन मैसेजेस के द्वारा। गांव फरा से, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ये हमें मैसेज भेज रहे हैं और ये मैं बता दूं कि मैसेज नहीं, ये आपका प्यार है। सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायार, प्रथमेश देशमुख, सर्वे देशमुख, प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख, इन्होंने हमें मैसेज भेजा है जाफराबाद से। और देखिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अभी आप सभी के मैसेजेस जो है वो शामिल करूं और आपके जो गाने हैं जो आप हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फरमाइश भेज रहे हैं, उसको मैं ज़रूर जो है कार्यक्रम में शामिल करूं। पर पहला गाना मेरी पसंद का आपके लिए पेश है लता जी की आवाज़ में और आप अपना प्यार भरा मैसेज हमें भेजते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

तो ये प्यार भरा गीत आपके लिए मेरी तरफ से आपको, और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे श्रोता हमें कई सारे मैसेज भेज रहे हैं, जिनमें से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबर राही, महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने जो है अपना प्यार भेजा है। अगला जो मैसेज है ये आया है हमें लता और नितेन मुकेश का, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। और ये है जी, हेलो मैं रितु बाथरा दिल्ली के गोपाल पार्क से। जी मैंने आपका मैसेज पहले भी शामिल किया था। अगला जो मैसेज है ये हमें लिखा है राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार ख्याला, विष्णु गार्डन से ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज आया है हमें ये आया है जी उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी, इन्होंने हमें अपना प्यार भेजा है। और अगला जो मैसेज है ये है कुमकुम गुड़िया, विजय सुरलकर, रतनमाला, मोताला, महाराष्ट्र से हमें मैसेज किया है इन्होंने। मेरठ से हमें लिखते हैं ये इनका नाम है कहाँ, कृपया हमारी प्लेलिस्ट में से एक गाना या कोई सदाबहार गाना ज़रूर सुनवाएं। जी हाँ, बस मुझे आपका नाम मिल जाए, मिल गया। दिग्दर्शन कविता, अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई, आपके इस प्यार के लिए बेहद धन्यवाद। और अगला जो मैसेज आया है ये हमें हिमाचल से आया है, हर्ष, विनय, विनीत और राजेश भाई, चंडीगढ़ सिटी से शिफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा, इन्होंने हमें अपना प्यार भेजा है। और अगला जो मैसेज है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, इन्होंने जो है हमें मैसेज भेजा है। मोहम्मद अफरोज, ये हमें बिहार से अपना प्यार भेज रहे हैं मैसेजेस के थ्रू। और ये मोरटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, ये हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। अगला जो हमें मैसेज आया है ये है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान का, ऊपरकोट बुंदेल शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खां, ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं। राजेश कुमार चौहान जालंधर से हमें जो है अपना प्यार

प्यार भेज रहे हैं। अगला जो मैसेज है ये आया है हमें राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, और गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये है संजय पाटिल, उषा पाटिल, निवृत्ति क्षीर सागर, संजय चौहान, नसवाला चौक मिल्कापुर से। और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये इसकी फरमाइश की थी दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने छत्तीसगढ़ से, और ये जो फिल्म है वो है खिलौना और गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और आप अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए क्योंकि तभी तो मैं आपकी फरमाइश पूरी कर पाऊंगी और आपका प्यार हम तक पहुंचता रहेगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम चल रहा है मन भावन, जहां हम सुनाते हैं आपको आपके पसंदीदा गीत और आप हम तक पहुंचा रहे हैं आपके प्यार भरे मैसेजेस। और जी हां, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप सभी के मैसेजेस को मैं शामिल करूं, पर आप ये भी समझिए कि हमारे पास वक्त की जो है थोड़ी सी पाबंदी है। तो अगर मैं किसी का मैसेज नहीं शामिल कर पा रही हूं या आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर पा रही हूं, तो मैं आपसे बहुत बहुत जो है माफी चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी कि अगली बार जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका गीत सुना दूं या आपके मैसेज को शामिल करूं। तो चलिए हम जो है मैसेजेस का ये सिलसिला जारी रखते हैं। हमें जो मैसेज किया है अभी रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिर नूर, ये हमें लिखते हैं उत्तराखंड से। अभी हमें मैसेज आया है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। अगला जो मैसेज पढ़ रही हूँ मैं, ये है हमें भेजा विजय मोहिबिया, कविता मोहिबिया, सोनू मोनू और पेंटर बाबू, ये हमें लिखते हैं शिवपुरम कॉलोनी से। अगला जो हमें प्यार भरा मैसेज आया है ये है बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधाना खुराना, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है वो है मोनू पराशर अरिपुल अलीपुर दिल्ली से, और वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला जो मैसेज पढ़ने जा रही हूँ मैं, ये है उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार, ख्याला से, इन्होंने हमें मैसेज किया है। और संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं और अपना प्यार भरा नमस्कार भी आप सभी को। मेरा भी प्यार आप तक मैं पहुंचा रही हूं गानों के थ्रू, और हाँ आपको बता भी रही हूँ कि कितना ज़रूरी है ये मिलन हमारा, कितना ज़्यादा जो है अच्छा लगता है जब आप लोग हमें अपने प्यार भरे मैसेजेस हम तक पहुँचाते हैं ना, तो मैं उस खुशी को जाहिर नहीं कर पाती हूँ। अगला जो मैसेज है वो है सोंगा मगर लॉर्ड छत्तीसगढ़ से, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, ये हमें भेज रहे हैं मैसेज। और अगला जो मैसेज आया है हमें, ये आया है राम शरवण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, बंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ये हमें बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं। अगला जो हमें मैसेज आया है ये है पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का, और उत्तम नगर भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। मौताला महाराष्ट्र से हमें मैसेज आया है विजय सुरलकर, रत्ना माला, आरती सुरलकर का, और दिल्ली के उत्तम नगर से आनंद जो है वो भी हमें सुन रहे हैं। और अगला जो मैसेज आया है वो है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से। और अगला मैसेज जो है हमें वो आया है प्यार भरा आदाब, आपको भी प्यार भरा आदाब, और ये भेजा है हमें शेख मूसा मोहसिन ने। आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो गीत है ये है मैं आप

को सुनाने जा रही हूँ। दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से और इसकी फरमाइश की थी किशन बंजनी नीलम स्वाति किशु रेलवे कॉलोनी से। तो चलिए सुनते हैं ये प्यार भरा गीत लता जी की आवाज में।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये

0: के जन कल्याण के।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
6: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रेणुका, लेकर कार्यक्रम मन भावन। और आपके प्यार भरे मैसेजेस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमें अगला मैसेज भेजा है पूरी खान फैमिली और अब्बासी फैमिली, ये हमें सुन रहे हैं। ये जब पूरी फैमिली बैठ कर हमें सुनती है ना, तो हमें लगता है हम भी आपकी फैमिली का ही हिस्सा हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? और अगला मैसेज हमें आया है जिला खरगोन सनादेव मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजा, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, ये हमें जो है मैसेज कर रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है हमें मोहम्मद यूनस

खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, मोहम्मद अयूब मुलाजी छिपा कॉलोनी खांडवा से। और अगला जो मैसेज है ये हमें उत्तम नगर दिल्ली, जॉन सीना, बी आर टेलर, सुमन सरिता, इन्होंने अपना मैसेज भेजा है। और ये हमें मैसेज आया है पता नहीं इनका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है, पर इन्होंने कहा है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। अगला जो हमें मैसेज आया है सतीश अनेजा बिमला अनेजा चंडीगढ़ से, और हमें अगला मैसेज भेजा है सरोज बंसल अनूप कौर गुरुग्राम से, ये हमें लिखते हैं, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, माधुरी किरण, अनुराग मोहन, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है हर्षा रोमकर, दिलीप रोमकर, अक्षय रोमकर, रुद्रा रोमकर, रोमकर परिवार अपना प्यार भेज रहे हैं हमें अमरावती महाराष्ट्र से। और एक बड़ी ही दूर से हमें मैसेज आया है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से भी हमें सुना जा रहा है, प्रतिति घोष जो हैं वो हमें लिख रही हैं कि वो भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन राजा, गोसिया फातिमा, ये हमें लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। और अगला जो मैसेज है ये है बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खां अजलान, ये हमें मोताला बाज़ार से जो है मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है ये है मोहम्मद अफरोज़ का, आपका मैसेज मैंने पहले भी शामिल किया था और फिर से शामिल कर दिया, कोई बात नहीं है ना। अगला मैसेज है रेणु का बेटा राम राम, राम राम अंकल जी आपको भी, और ये हमें गौरी शंकर नांगलोई से लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जब ऐसे प्यार भरे मैसेज आते हैं ना तो दिल सच में भर उठता है और मन करता है कि बस गाने ना सुनाऊं मैं आपको, आपके बस आपके मैसेज पढ़ती रहूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। आप भी सोचेंगे अरे मेरा गाना तो नहीं बचा है, बस ये मैसेजेस पढ़े जा रही हैं, पर क्या करूं, प्यार इतना ज़्यादा है आप लोगों का कि बस मन नहीं भरा मेरा। अगला जो मैसेज है ये हमें आया है महाराष्ट्र से, किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर और पुन्नू वड़तकर, ये हमें भेज रहे हैं अपना प्यार मैसेजेस के थ्रू। और अगला जो मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहाना अरजान और अब्बान अब्बासी, ये हमें बुलंदशहर से जो है मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है ये हमें भेजा है ये आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, ये हमें जो है लिख रहे हैं जमशेदपुर से हमें मैसेज आया है। अगला मैसेज हमें भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू सुभाष योगी, ये हमें जो है मैसेज कर रहे हैं। और सूरत गुजरात से भी जो है नीलेश टेलर और प्रिया और उषा ने हमें मैसेज किया है। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से भी हमें मैसेज आया है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का। और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसकी हमें फरमाइश भेजी थी चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने, फिल्म है हीरा पन्ना। और चलिए सुनते हैं, आप हमें मैसेजेस करना बिल्कुल मत भूलिए, नंबर मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ 9868868753, आपका प्यार भेजते रहिए तभी तो पता चलेगा कि आप FM गोल्ड और हमारे कार्यक्रम से कितना प्यार करते हैं।

छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखना रानी जूही इकबाल इमरान अहमद फूल वाले, कापसहेड़ा बॉर्डर लाइन दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी रबिया मंता शाह आशु अहमद फूल वाले, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। विष्णु गार्डन नई दिल्ली से नईम खां अकरम निसार सरून ने हमें अपना मैसेज भेजा है। और अगला मैसेज जो है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां ये भी हमें सुन रहे हैं। और भवानीगढ़ जिला संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरेंद्र कौर, हरप्रीत कौर, इन्होंने भी हमें जो है मैसेज भेजा है। आदिल कमर गुन्नौर से ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है वो है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार। और अगला मैसेज हमें आया है तवार वाली गली खांडवा एमपी से नशरी खां, वासिम खां और मुबीना खान, ये भी हमें सुन रहे हैं। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति, पौरुष वाइटफील्ड बेंगलुरु से ये हमें सुन रहे हैं। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिगिया, नमन।

भीगया, इनका भी हमें मैसेज आया है। और अगला जो मैसेज है, अनीता वर्मा पीतमपुरा दिल्ली से हमें लिख रही हैं, ये भी हमें अपना प्यार भेज रहे हैं मैसेज के थ्रू। छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, ये भी हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है ये हमें आया है छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा इनका। और अगला जो मैसेज है वो है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, ये भी हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, और ये हमें दादरी गेट भिवानी से इन्होंने जो है हमें मैसेज किया है। आपका जो ये प्यार आप भेज रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और जिन लोगों के मैसेज में नहीं शामिल कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर जैसा मैंने आपको कहा कि समय की पाबंदी है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो है ये भूल चूक हुई है हमसे। वरना जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा तो मन है कि बस मैं यहाँ बैठूं और आपके मैसेजेस बस पढ़ती रहूं। अगला मैसेज मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमें जो है भेजा है। और अगला मैसेज है कस्बा गुन्नौर वालों की तरफ से, पसंदीदा गीत सुनवा दीजिए। ज़रूर ज़रूर, मेरी कोशिश यही है। अगला गीत जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो है बड़ी बहन फिल्म से, जिसकी फरमाइश हमें की थी गंज दुंद्वारा से शमसुल शाहिन, अनु खान, अदनान खान और फैज़ान ने। तो चलिए सुनते हैं ये गीत सुरैया जी की आवाज़ में।

अगला मैसेज हमें आया है प्रकाश चंद्र जोशी केरला घाटी चंपावत उत्तराखंड से राज और ये भी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। अगला मैसेज नईम खान निसार सरुन अकरम ये हमें उत्तर प्रदेश से मैसेज कर रहे हैं और रविंद्र फ्रॉम सिरसा हरियाणा नैरा पनिहार पूजा पनिहार यश पनिहार ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये लिखा

है इन्होंने कि इस वक्त हम सुन रहे हैं किचन में मन भावन रेणुका दीदी के साथ सबरा शबाना और रईसा जो है ये हमें मैसेज कर रही हैं। आप किचन से सुनिए या हॉल से या फिर बेडरूम से, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि आपके घर का एक सदस्य बनकर हमें रहना बहुत अच्छा लगता है और आप जो ऐसे मैसेज कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज है ये हमें आया है महेंद्र मोदी ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से, ये हमें भेज रहे हैं अपना मैसेज। और अगला जो मैसेज आया है वो है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विनी, मंगला बहन शाह, राजेंद्र जी शाह, ये हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है दिल्ली से और ज्योति मक्कर हमें मैसेज कर रही हैं। अगला मैसेज हमें मध्य प्रदेश से आया है हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची, तनु, ये हमें भेज रहे हैं। और अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है लता जी की आवाज़ में और फिल्म है तलाश, जिसकी फरमाइश हमें की थी सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से।

अगला हमें मैसेज भेजा है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से ये हमें अपना प्यार भरा मैसेज भेज रहे हैं। और अगला जो मैसेज है ये हमें आया है नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहन अहमद भारती, सूफिया नवाब बल्ली मारा से, इन्होंने हमें मैसेज किया है। कोहका भिलाई, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, ये भी हमें मैसेज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बचेली से बंजारन फिल्म का गाना सुनाने का बोल रहे हैं और ये है सुभाष। खैर मैं गाना तो नहीं चला सकती, पर हाँ मैंने आपका मैसेज जो है वो ज़रूर शामिल कर लिया है। अगला जो हमें मैसेज भेजा है वो है विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, इन्होंने हमें मैसेज किया है। नारायण होगे, कमल होगे, दिव्या होगे, जय होगे, इन्होंने भी जो है बुल्ढाना से हमें मैसेज किया है। श्रोताओं आपके इन प्यार भरे मैसेजेस के लिए आपका बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि गाना क्यों नहीं चलाया, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी पाबंदी है, मेरे पास भी समय कम रहता है, पर आप जो है नाराज़ मत होइए और गुस्सा मत होइए, माफ़ कर दीजिए अगर मैं आपके मैसेजेस को शामिल नहीं कर पाई। पर हाँ आप हमेशा इसी तरीके से अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.5।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में भाग ले रहे हैं। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की आज शाम को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। बैठक के दौरान परस्पर सहयोग को मजबूत करने संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हो सकता है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में मुलाकात हुई थी। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल बढ़ाने और तस्करी रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ गया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्यभर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 34 ओवर में 2 विकेट पर 276 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और

ईशान किशन शतक लगाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www

0: delhitalenthunt.com कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: website. Kindly visit www.mohua.gov.in, or you could also go on to www.giso.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक बैलिस्टिक्स, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन विज्ञान, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्टिंग, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक दस्तावेज, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक फोरेंसिक विज्ञान, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक फोटो, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अपराध स्थल जिला मोबाइल फोरेंसिक इकाई, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक फिंगरप्रिंट, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, तकनीकी सहायक हिंदी, सहायक अभिलेखागार पाल ग्रेड 1, आईटी सहायक फिटर ग्रेड 2, लिफ्ट ऑपरेटर, सहायक ऑपरेटर सह मैकेनिक, सबस्टेशन अप्रेंटिस, डेटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड ए, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान, घरेलू विज्ञान शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान, विशेष शिक्षक प्राथमिक और विद्युत ओवर सीयर। इन रिक्तियों के लिए आवश्यक नियमों, शर्तों और योग्यताओं आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट dssbonline.nic.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल कलिकिरी अन्नमया जिला आंध्र प्रदेश राज्य इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आर्ट मास्टर एक रिक्ति, पीटीआई कम मैट्रन महिला एक रिक्ति। अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताओं, पात्रता और अन्य विवरणों सहित विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए सैनिक स्कूल कलिकिरी की वेबसाइट sskal.ac.in। केंद्रीय सतर्कता आयोग आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। तकनीकी परीक्षक, सहायक तकनीकी परीक्षक और सहायक तकनीकी परीक्षक बागवानी। पात्रता संबंधी शर्तों, योग्यता इत्यादि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट cvc.gov.in। महानिदेशक मौसम विज्ञान का कार्यालय आमंत्रित कर रहा है प्रशासनिक परामर्शदाता के 2 पदों और वैज्ञानिक परामर्शदाता के 10 पदों के लिए आवेदन। प्रशासनिक परामर्शदाता के लिए आयु 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वैज्ञानिक परामर्शदाता के लिए भी आयु 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट internal.imd.gov.in। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। विशेषज्ञ ग्रेड 2 यानम परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पुदुचेरी परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर करैक्कल परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानम परिसर के लिए और बाल मनोवैज्ञानिक पुदुचेरी परिसर के लिए। यानम परिसर के लिए कुल पद 8 हैं, पुदुचेरी के लिए 1, करैक्कल के लिए 5, बाल मनोवैज्ञानिक पुदुचेरी के लिए 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.jipmer.edu.in। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का ईमेल का पता भी आप नोट कर सकते हैं group@jipmer.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड व्हाइल आई वाज कमिंग टू द स्टूडियो करिश्मा, आई वाज जस्ट थिंकिंग, इमेजिन 2026 के अभी तो लग रहा है हम लोगों ने पहला शो किया था परिक्रमा का और अब 6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं, छठे महीने का भी आधा महीना निकल चुका है
1: मार्च को छोड़कर। मार्च जितना लंबा था कि हर कोई इंतजार कर रहा था कब खत्म होगा।
2: राइट, बट सी वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू एंड आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव मेड प्लान्स फॉर दिस ईयर, सो टाइम फॉर अ वेक अप कॉल बिकॉज हाफ ऑफ द ईयर हैज ऑलरेडी पास्ड। बट हाफ एन आवर जो अगला होगा उसमें हम आपके लिए लाएंगे ताजा तरीन खबरें एंड ऑफ कोर्स सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा वी विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव फ्रॉम देयर, ऑल ऑफ दैट नाउ शो। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस करिश्मा।
1: G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया।
2: Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France.
1: Raksha Mantri Rajnath Singh ne surgical strike Balakot aur Operation Sindoor ka udharan dete hue kaha, Bharat ki samprabhuta se koi samjhauta nahi kiya ja sakta.
2: India's defense production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21.
1: सुरक्षा बलों ने मणिपुर में परिवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट।
2: And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And as always, we begin our show with our special segment, Dateline India, in which we take a look at some important events or topics. And well, today we are going to talk about the World Day to Combat Desertification.

0: important day is observed every year on 17th of June to raise awareness about the growing challenges of desertification and drought and to encourage international cooperation in tackling them.
1: और 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को मरुस्थलीयकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस घोषित किया था। इसका मकसद उन देशों में, खासकर अफ्रीका में जहां गंभीर सूखा होता है या मरुस्थलीयकरण की समस्या सबसे ज्यादा है, वहां लोगों में जागरूकता बढ़ाना और मरुस्थलीयकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को लागू करना था।
0: And now when people hear the word desertification, they often imagine deserts expanding rapidly, but it's actually a process where fertile land gradually loses its productivity due to factors like climate change, unsustainable land use and prolonged droughts.
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और अच्छी बात यह है कि जमीन के रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है, यानी कि अभी से भी इसमें सुधार किया जा सकता है। सही कदमों, लोगों की भागीदारी और जमीन के टिकाऊ प्रबंधन के तरीकों से खराब हो चुकी जमीन को फिर से ठीक किया जा सकता है।
0: Absolutely.

0: factors like climate change, unsustainable land use and prolonged droughts.
1: बिल्कुल सही कहा आपने और अच्छी बात यह है कि जमीन के रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है यानी कि अभी से भी इसमें सुधार किया जा सकता है सही कदमों लोगों की भागीदारी और जमीन के टिकाऊ प्रबंधन के तरीकों से खराब हो चुकी जमीन को फिर से ठीक किया जा सकता है
0: Absolutely, Karishma. And if we talk about this year's theme of World Day to Combat Desertification and Drought is Rangelands Recognize, Respect, Restore. It's a powerful message that shines a spotlight on one of the most overlooked ecosystems on our planet, rangelands.
1: कई सुनने वालों के मन में अब जरूर ये सवाल आ गया होगा कि आखिर rangelands क्या होते हैं तो इसे भी समझ लेते हैं.
0: Right, great question. Rangelands are vast natural landscapes such as grasslands, shrublands, savannas and open grazing areas where livestock and wildlife thrive. In fact, they cover more than half of the earth's land surface.
1: और ये बहुत बड़ी बात है फिर भी इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद चारागाहों को अक्सर वह ध्यान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं
0: एब्सोल्युटली करिश्मा दीज इकोसिस्टम्स दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन फूड सिक्योरिटी बाय सपोर्टिंग लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर दे ऑल्सो हेल्प मेंटेन बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट वाटर साइकिल्स एंड बिल्ड रिजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज
1: और दुनिया भर के उन लाखों लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी संस्कृति परंपराएं और आजीविका इन इलाकों में गहराई से जुड़ी हुई हैं
0: Very true. That's why this year's theme emphasizes three important actions: recognize, respect, and restore.
1: और आइए इसे विस्तार से समझते हैं सबसे पहले चारागाहों के आर्थिक पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हैं
0: That's right. That's taken care of the recognized aspect of the theme. And the second word is respect. Yes, we should respect the communities and traditional stewards who have protected and managed these lands for generations.
1: और तीसरा टिकाऊ तरीकों संरक्षण की कोशिशों और बेहतर निवेश के जरिए खराब हो चुकी चारागाह जमीनों को फिर से ठीक करना है
0: So yes, जैसा हम तीनों ने बताया हम दोनों ने बताया कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं recognize, respect and restore what they mean and how we all can contribute in probably, you know, living them to the fullest. And you know, combating desertification isn't just the responsibility of governments and environmental organizations, बल्कि हम सबको उसमें जो है अपना ये जो है कह सकते हैं साथ देना चाहिए
1: बिल्कुल सायरा और हर कोई इसमें योगदान दे भी सकता है जैसे कि पानी बचाना टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाना स्थानीय पेड़ पौधे लगाना और जागरूकता फैलाना इन सभी से फर्क पड़ सकता है
0: And perhaps the most important lesson today is that solutions are possible when people work together.
1: और इस आयोजन के पीछे यही भावना है कि हर स्तर पे भागीदारी और सहयोग स्थानीय समुदाय से भी मिल सके.
0: Yes, indeed. And as we mark this day, let's remember that healthy land means healthy ecosystems, secure livelihoods, and a more resilient future.
1: तो आइए हम अपने चारागाहों की अहमियत को समझें, उनकी देखभाल करने वालों का सम्मान करें और जो खो गया है उसे फिर से बहाल करें
0: And Karishma, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today said that India has already brought 21.76 million hectares of land under restoration efforts against its target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi.
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है
0: As we conclude, it's important to remember that desertification and climate change are deeply connected. Rising temperatures and changing weather patterns are putting increasing pressure on our land and soil.
1: बिल्कुल सही और जब जमीन खराब हो जाती है तो समुदायों को गरीबी पलायन और सीमित संसाधनों के लिए उनकी लड़ाई झगड़े जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है
0: That's right, as we all know that in today's world the biggest fight will be for resources And we are already witnessing that. But there is hope. Restoring degraded land, preventing soil erosion, and bringing back vegetation can help reduce greenhouse gas emissions and stress.

0: strengthen climate resilience.
1: और दूसरे शब्दों में अपनी जमीन की सुरक्षा करके हम अपने भविष्य की भी सुरक्षा कर रहे हैं. हर कोशिश चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, एक बेहतर और स्वस्थ ग्रह बनाने में योगदान दे सकती है.
0: So on this World Day to combat desertification and drought, let's recognize that sustainable land management is not just an environmental responsibility. It's a pathway to sustainable development, stronger communities and a more climate resilient world.
1: और इसी के साथ श्रोताओं, हम सब मिलकर खराब हो चुकी जमीन को फलते फूलते इकोसिस्टम में बदल सकते हैं और हम सब मिलकर सभी के लिए एक हरा भरा और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं.
0: So let's play our part to protect and restore our planet.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. और सबसे पहले बात रायपुर की करेंगे. पानी जीवन की सबसे अनमोल जरूरत है और इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है मोर गांव मोर पानी महाअभियान, जो अब जन भागीदारी से एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले रहा है. पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट.
2: मोर गांव मोर पानी अभियान का उद्देश्य है वर्षा जल का संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और आने वाले समय के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना. छत्तीसगढ़ के गांवों में ग्रामीण खुद आगे बढ़कर जल संरक्षण की संरचनाएं तैयार कर रहे हैं. बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड में इस अभियान ने एक नया उदाहरण पेश किया है. यहां ग्रामीणों, जन प्रतिनिधियों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और पंचायत कर्मियों ने मिलकर एक ही दिन में 2000 जल संरक्षण मॉडल संरचनाओं का निर्माण किया. इस काम में लोगों ने श्रम दान कर अपनी भागीदारी निभाई. इन संरचनाओं से बारिश के पानी को सहेजने में मदद मिलेगी. इससे भूजल स्तर बेहतर होगा और किसानों तथा ग्रामीणों को लंबे समय तक पानी की उपलब्धता हो सकेगी. राज्य शासन ने अभियान की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं बनाई हैं. मोर गांव मोर पानी अभियान सिर्फ पानी बचाने की पहल नहीं, बल्कि यह प्रकृति संरक्षण और सामुदायिक जिम्मेदारी की नई मिसाल है. आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाने का यह प्रयास निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक कदम है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला.
0: एंड परिक्रमा में हम लोग तो करिश्मा देश की परिक्रमा तो करते ही हैं, बट टुडे वी हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हम लोग परिक्रमा करेंगे देश के बाहर भी जाके. यस, ऑल द वे टू फ्रांस. एन इंडियन हेल्थ टेक स्टार्टअप इज टेकिंग इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग हेल्थ केयर सॉल्यूशंस टू द ग्लोबल स्टेज, ट्रांसफॉर्मिंग एल्डरली केयर बाय टैकलिंग वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू सीनियर इंडिपेंडेंस, दैट इज मोबिलिटी लॉस एंड डेबिलिटेटिंग फॉल्स. लाइफ स्पार्क टेक्नोलॉजीज विल पार्टिसिपेट इन यूरोप्स Premier startup and innovation event Viva Tech in France, showcasing its cutting-edge indigenous medical devices. We have an exclusive report from our correspondent.
3: The IIT Bombay incubated startup has developed an innovative wearable device paired with an artificial intelligence platform called Pathfinder. The technology provides targeted muscle stimulation to correct miscommunications between the brain and spinal cord, particularly helping stroke survivors and patients battling with Parkinson's disease. By analyzing walking patterns in real time, the advanced AI predicts and visualizes fall risks before they happen. While speaking exclusively with Akashwani, Amay Desai, founder and CEO of LifeSpark, said that
4: Our vision is that care becomes preventive and you have a health guardian in your home that sort of prevents issues from occurring in the very first place and takes the load off of our doctors.
3: As LifeSpark prepares to present this breakthrough on global platform in Paris, its proactive home-based care model is already successfully helping seniors avoid injuries and confidently reclaim their independent lives. For Parikrama, Mahesh Sopade, Akashwani News, Paris, France.
0: Indeed, a very, very novel initiative there. And I'm sure that a lot of lives would be changed by this innovation. And coming back to our country now, India's tribal communities have always been rich in culture, traditional knowledge and resilience. What they lacked was equal access to infrastructure and services like transport, education, healthcare, water, power and employment opportunities. However, this phenomenon changed during the last 12 years, with the Modi government adopting Antyodaya as its mantra. Areas once seen as difficult to reach have now become central to development planning and last mile delivery. We have a report.
5: In the last 12 years, the Modi government has implemented many flagship initiatives and schemes for the welfare and empowerment of the tribal community.

मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है।

अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोरपिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये दरहोरा, सेमई, करंजवार, खरसोता, परमेश्वरपुर, हरिहरपुर, पार्वतीपुर, कैराडांड, सिंगरा, भरदा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, जवाखाण, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, लखनपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, पटकुरा, शिवनाथपुर, घासीडी, बोड़ाझरिया, ढोढ़ा गांव, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ा घाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 97 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमाटिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरीत, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे

0: एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
1: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेनरिकले लीड्स में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ टिप कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 6:30 से 6:45 तक, शाम 7 से रात 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। ये प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर युवाणी आप सुनेंगे हिंदी में। इसमें आजकल का विषय होगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस। इसके अलावा सुनेगा क्रम पत्र मिला और यादें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:45 पर सुनेगा शाहिद परवेज का सितार वादन। तो ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। और अब आपको बता देते हैं हमारे केंद्र से कल की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल शाम 4 सुनेगा संदेश टू सोल्जर्स। कल रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। प्रगति के सोपान, इस कार्यक्रम में सुबह 9 सुनेगा नशा मुक्त भारत अभियान पर समाज कल्याण विभाग रायपुर के संयुक्त संचालक श्री अरविंद गेदाम से ली गई भेंटवार्ता। सुबह 10 आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम नक्सलवाद। और रात 9:25 पर सुनेगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत विरासत। रात 8:15 पर आप सुनेंगे 19वीं शासकीय भर्ती परीक्षा पास अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से ली गई विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की होगी। बच्चों का कार्यक्रम बालवाटिका में बेरा के बाद का विषय होगा योग ला अपन दिनचर्या के हिस्सा बनावो। आवा सुनन कहानी में सुनेगा कहानी चिरई चुरगुन हमर संगवारी। कहानीकार होंगे श्री राम कुमार साहू। इसके अलावा सुनेगा क्रम लेखा मन की चिट्ठी और लेखा मन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फुलवारी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दिन में 12:00। कल शाम 5:00 सुनेगा एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट बिंदिया। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें, योग भगाएं रोग। स्वरोजगार से सशक्तिकरण विषय पर सुनेगा वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अंजलि औधिया। कल शाम 5:10 पर युवाणी आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में। इसमें अपन गोठ में चर्चा होगी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर। और संस्कृति के महक में सुनेगा खेती किसानी और हमर संस्कृति, इस विषय पर दीपमाला तिवारी द्वारा दी गई जानकारी। तो ये थे हमारे केंद्र से कल की सभा से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवाओं का अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: हौसलों के प्रकाश में जिंदगी की वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख।
1: नया जोश है, नई उमंग है, हवाओं में आज युवाओं का रंग है, कुछ कर गुजरने की चाह लिए हर युवा आज वक्त के संग है।
0: इसी खूबसूरत सोच के साथ रेडियो के सभी युवाओं और ऊर्जावान श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: आज आप सभी के बीच कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रोशनी पांडे,
0: और मैं काजल साहू। तो स्वीकारे हमारा प्यार भरा नमस्कार। कहाँ जाने की तैयारी में हो रोशनी?
1: दिन भर की भाग दौड़ और इस गर्मी से परेशान होने के बाद सोच रही हूँ काजल, कुछ समय पास वाले पार्क में बैठूं, प्रकृति के बीच ठंडी हवाओं के साथ सुकून की सांस लूं।
0: अच्छा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारी इसी बात से ना मुझे एक बहुत ज़रूरी बात याद आई।
1: ज़रूरी बात? वो क्या है काजल?
0: बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम अपनी आँखें तो बंद करो।
1: चलो भाई ठीक है, कर ली आँखें बंद, अब तो बताओ।
0: अब जरा सोचो, जिस पार्क में अभी तुम जाकर बैठने वाली थी, तुम्हारे पैरों के नीचे वो हरी हरी ताजी घास और मिट्टी रेती में बदल जाए तो फिर क्या होगा? दूर दूर तक सिर्फ सूखी रेत हो और पीने के लिए एक भी बूंद पानी ना बचे, तब
1: अरे बस बस काजल, ये तो सोचने में ही इतना डरावना है, इसकी कल्पना से ही मुझे सूखे, गर्मी और बेचैनी का एहसास हो गया भाई।
0: लेकिन अफसोस रोशनी, ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि आज की हकीकत भी है।
1: बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हर साल लाखों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है, पेड़ कट रहे हैं और हमारी धरती प्यासी होती जा रही है। पर तुमने ये नहीं बताया काजल कि तुम मुझे कौन सी ज़रूरी बात बताने वाली हो।
0: रोशनी, यही तो वो ज़रूरी बात है। आज है 17 जून, यानी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटारे का दिवस।
1: इतना बड़ा नाम काजल, जरा आसान शब्दों में मुझे और हमारे श्रोताओं को समझाओ कि आखिर इसका मतलब क्या है।
0: देखो रोशनी, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। हमारी हरी भरी और उपजाऊ जमीन हमारी गलतियों के कारण धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और रेगिस्तान जैसी सूखी बनती जा रही है, तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं।
1: अच्छा, लेकिन काजल जमीन अचानक बंजर कैसे हो गई? और मिट्टी तो हमेशा वैसी ही रहती है।
0: नहीं रोशनी, ऐसा अचानक नहीं होता, ये सब धीरे धीरे होता है। जब हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़मीन का गलत तरीके से दोहन करते हैं, तो मिट्टी धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खो दे जाती है।
1: अच्छा अब समझी, पेड़ ना होने से मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाएगी और वो हवा पानी के साथ बह जाएगी और बच जाएगी सिर्फ रेत, इसी वजह से सूखा भी पड़ता है ना काजल?
0: बिल्कुल सही समझी तुम, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो बादल भी नहीं आएंगे और बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं आएगी।
1: और बारिश नहीं तो नदी तालाब कुएं सब सूख जाएंगे। काजल जरा सोचो, अगर पीने को पानी और खाने को अनाज ना हो तो हमारा क्या होगा?
0: वही तो रोशनी, अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये दिन है जागने का, संभलने का और कदम उठाने का। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम आज नहीं संभलेंगे तो हमारी उपजाऊ धरती रेगिस्तान बन जाएगी।
1: तो काजल, हमें युवा होने के नाते अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए और जो नुकसान अब तक हो चुका है उसकी भरपाई के लिए भी कुछ करना होगा।
0: बिल्कुल रोशनी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे हमारे कदम भी एक बड़ा बदलाव लाते हैं। सबसे पहला और आसान कदम है, अपने जन्मदिन या अपनी ज़िंदगी के किसी भी खास मौके पर हम कम से कम साल में एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी लें। दोस्तों, ये आपके जन्मदिन को खास तो बनाएगा ही, साथ ही हमारे भविष्य को भी सुधार

0: करेगा।
1: श्रोताओं, इसके साथ ही हमें पानी की बर्बादी बिल्कुल बंद करनी होगी, वर्षा जल का संचय करना होगा तथा ग्रे वाटर यानी रसोई में या किसी भी काम में इस्तेमाल हो चुके पानी को नाली में फेंकने की बजाय पेड़ पौधों या खेतों में उसका इस्तेमाल करना होगा।
0: बिल्कुल ठीक रोशनी। साथ ही दोस्तों, हमें प्लास्टिक के उपयोग का भी घटाना होगा। श्रोताओं, आप सभी तो ये जानते हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को प्लास्टिक कम कर देता है, साथ ही पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है।
1: काजल, मुझे लगता है खेती में भी हम कुछ सुधार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे जैविक तरीकों को बढ़ावा दे सकते हैं, मिट्टी की सेहत इससे सुधरेगी, ड्रिप सिंचाई की तकनीक को भी अपना सकते हैं जिससे पानी की बचत होगी और फसल भी हमें अच्छी मिलेगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम फसल चक्र को भी अच्छा कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं। उसका लगना मिट्टी के फिसलने को रोकता है और नमी बनाए रखता है। मेड़ बनाकर पौधे लगा सकते हैं ताकि मिट्टी की पकड़ और मजबूत बने रहे।
1: अरे वाह काजल, ये तो बहुत ही अच्छे उपाय बताए तुमने। अगर हम इन तरीकों को अपना लेंगे तो सूखे की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
0: तुमने बिल्कुल सही कहा रोशनी। पानी और मिट्टी को बचाना सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर इन उपायों को अपनी आदत बनाएंगे तभी हम सब इस समस्या को दूर कर पाएंगे।
1: तो दोस्तों, चलिए आज हम सब संकल्प लेते हैं कि अपनी धरती को बचाने और उसके संसाधनों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और इसे हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रोशनी, क्या ढूंढ रहे हो? बहुत देर से देख रही हूँ मैं।
1: काजल, तुमने ही तो कहा था कि मेरे लिए कुछ खास लेकर आने वाली हो, तो कहाँ है वही ढूंढ रही हूँ।
0: रोशनी, आज है बुधवार और बुधवार को क्या खास लेकर आ सकती हूँ बताओ जरा।
1: वो तो मुझे अच्छी तरह से याद है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि पत्र आखिर है कहाँ।
0: अरे यही तो है, देखो तुम्हारे सामने।
1: अच्छा, तो फिर चालू करूं पत्र पढ़ना?
0: बिल्कुल
1: ठीक।

0: तो रोशनी, ये पहला पत्र कहाँ से आया है?
1: ये पहला पत्र आया है काजल नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव और सुरेश यादव का। इन्होंने लिखा है, रविवार 31 मई को युवानी कार्यक्रम इन्होंने सुना, जिसमें आजकल क्रम में कठिन रास्ते ही हमें मंजिल तक ले जाते हैं, इस विषय में दी गई जानकारी इन्हें प्रेरणादायक लगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी दी गई जो हमें महत्वपूर्ण लगी। युवा भारत युवा संकल्प के अंतर्गत किए जाने वाली समाज सेवा के बारे में जानकारी हमें बहुत उपयोगी लगी। कार्यक्रम को सुनकर हमें एनजीओ के माध्यम से जुड़कर काम करने की इच्छा जागृत हुई। युगल गीत में प्रसारित सभी गीतों को सुनकर मन मनोरंजन से भाव विभोर हो गया। रविवार 31 मई के युवानी कार्यक्रम के प्रेरणादायक शिक्षाप्रद और मनोरंजक प्रस्तुति के लिए अपेक्षा शुक्ला और संस्कार जैन को हार्दिक बधाई।
0: श्रोताओं, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने 31 मई के कार्यक्रम के लिए इतने ध्यान से सुना, और हमें इस बात की खुशी है कि आपने इस कार्यक्रम को इतना सराहा। इस दिन आजकल का विषय था, कठिन रास्ते ही हमें मंजिल तक ले जाते हैं। इस विषय पर की गई बातचीत आपको पसंद आई, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। इस दिन क्रम युगल गीत के गाने भी आपको बहुत अच्छे लगे और आपने इसकी प्रशंसा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम आपकी बधाई कॉम्पियर साथी अपेक्षा शुक्ला और संस्कार जैन तक प्रेषित करते हैं। पत्र भेजने के लिए आपका धन्यवाद। रोशनी, ये अगला पत्र हमें आया है शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा का, और ये लिखते हैं, 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा, पर्यावरण विषय पर तथ्यक चर्चा हमें अच्छी लगी। छाया में खड़े होना

0: हम सब चाहते हैं, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। खूब पेड़ लगाइए और फ्री में जीवनदायिनी ऑक्सीजन पाइए, पूरे भारतवर्ष की निरोगी बनाइए। क्रम मार्गदर्शन में डॉक्टर सुमिता दवे और दीपक हटवार जी के मध्य बातचीत हमें बेहद पसंद आई। डॉक्टर दवे जी के विचारों को सुनने के बाद लगा कि विद्यार्थी अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा उन्मुखी बनते हैं। शिक्षक का महत्व जीवन में हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने ताकि हमें अच्छी नौकरी मिले और हम अपना जीवन अच्छा से व्यापन करें। सभी के लिए कंपेयर साथी डॉक्टर सुनीता दवे और दीपक हटवार जी को इस कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए बहुत बधाई।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 5 जून के युवानी कार्यक्रम को इतनी अच्छी तरह सुना और सराहा। इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा की गई जो आपको बेहद पसंद आई। साथ ही क्रम मार्गदर्शन में डॉक्टर सुमिता दवे और दीपक हटवार जी के मध्य बातचीत आपको पसंद आई और आपने इसकी प्रशंसा की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम आपकी बधाई अपने कंपेयर साथी आरव शुक्ला और श्रेया चक्रवर्ती तक प्रेषित करते हैं। पत्र भेजने के लिए आपका धन्यवाद।
0: तो रोशनी, पत्रों का सिलसिला तो यहीं समाप्त होता है, अब शुरू करते हैं ईमेल्स का सिलसिला। तो बताओ ये पहला ईमेल हमें कहाँ से आया है?
1: काजल, ये पहला ईमेल हमें ग्राम परसाटोला जिला अम्बागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया और सिलोचनी मसिया ने भेजा है। ये लिखते हैं, 10 जून के युवानी कार्यक्रम में कंपियर साथी अपेक्षा जी एवं आरव जी ने समसामयिक विषयों पर बेहद रोचक और प्रभावशाली चर्चा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के क्रम पत्र मेला में श्रोताओं द्वारा भेजे गए ईमेल और पत्रों को बड़ी खूबसूरती से शामिल करते हुए हमारी पसंद के शानदार युगल गीत सुनाए गए, जिसने कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ा दी। इतनी बेहतरीन, मनमोहक और सराहनीय प्रस्तुति के लिए अपेक्षा आरव सहित पूरे युववाणी अनुभाग को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।
0: साथियों, आप सभी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने 10 जून के युवाणी कार्यक्रम को अपना प्यार और स्नेह दिया। हमें खुशी है कि कार्यक्रम की चर्चा, क्रम पत्र मिला और क्रम अपनी आपकी पसंद के युगल गीत आपको बहुत पसंद आए। आपके भेजे गए ईमेल और पत्र हमें हर बार और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। आगे भी इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मैं अपेक्षा और आरव और पूरे युवाणी अनुभाग की ओर से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ पत्र लिखने के लिए। धन्यवाद। इस दिन के लिए हमें और भी पत्र आए हैं। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज ऋषभ मरावी, खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे, सुशीला, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन।
1: काजल, ये अगला ईमेल कहाँ से आया, जरा पढ़ के बताओ।
0: तो ये अगला ईमेल हमें आया है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल का, और ये लिखते हैं, 12 तारीख की युवाणी कार्यक्रम में हमारे युवा साथी पलक और सिद्धांत ने आजकल विषय में बाल श्रम विरोध दिवस पर बेहद अच्छी और जानकारी भरी बातें हमसे साझा की। इसके बाद खेल चौपाल में सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में रोचक जानकारी सुनने को मिली, साथ ही इस सप्ताह के विभिन्न खेलों को भी शानदार जानकारियां दी गई। फिर क्रम इंद्रधनुष में हेलमेट की खोज और उसके उपयोग के बारे में छोटी छोटी लेकिन ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिली, जो हमें ज्ञानपूर्व और बहुत ही अच्छी लगी। कार्यक्रम के दौरान कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत भी सुनाए गए, जिन्होंने कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बना दिया। इस शानदार और सराहनीय प्रस्तुति के लिए पलक और सिद्धांत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद जिन्होंने 12 तारीख के युवानी कार्यक्रम को अपना प्यार और स्नेह दिया। हमें खुशी है कि आजकल में विश्व बाल श्रम विरोध दिवस पर की गई चर्चा, खेल चौपाल की जानकारी, इंद्रधनुष की प्रस्तुति और फिल्मी गीत आपको पसंद आए। आपका साथ और उत्साह हमें हर बार कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, आगे भी इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आपकी बधाई मैं पलक और सिद्धांत तक माइक्रोफोन के जरिए प्रेषित करती हूँ। बहरहाल पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद। इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल्स आए हैं काजल। धरसीवा बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, सीता यादव का, संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव का, बाजारवर्ड महासमुंद से भीष्मदास नर्मदा, हिरमनी लक्ष्यदास का, करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, गुड़िया निर्मलकर का।
0: साथियों, ये अगला ईमेल हमें आया है ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक राजनांद गांव से।

0: एन कुमार गुप्ता अंजलि गुप्ता का। और ये इन्होंने क्या लिखा है ईमेल में बताए?
1: काजल, इन्होंने लिखा है, 14 जून रविवार को हमें युववाणी कार्यक्रम सुनने का अवसर मिला, जिसे अंजलि और आदित्य ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा से हुई, जिसमें बताया गया कि 18 से 60 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और किसी का जीवन बचा सकता है। इसके बाद राग नंदिनी में राग मांड की जानकारी और उस पर आधारित फिल्मी गीत सुनाए गए। साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान गायिका विदुषी गिरजा देवी जी के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सवाल जवाब अंक 102 के उत्तर सुनने को मिले और अंक 103 के प्रश्न भी बताए गए। पूरा कार्यक्रम ज्ञानवर्धक और बेहद रोचक लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 14 जून की युववाणी कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना और उसे सराहा। हमें खुशी है कि विश्व रक्तदाता दिवस पर दी गई जानकारी राग नंदिनी में प्रस्तुत की गई विदुषी रागमांड और विदुषी गिरिजा देवी का परिचय तथा सवाल जवाब आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगे। आप सभी श्रोताओं का हृदय से और सहयोग हमारी असली ताकत है। आगे भी हम ऐसे ही उपयोगी और मनोरंजक कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। आपका स्नेह और परिपूर्ण पत्र लिखने के लिए धन्यवाद।
1: काजल, अगला ईमेल हमें आया है सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल, किशन पटेल का। 15 जून सोमवार के युवाणी कार्यक्रम के लिए इन्होंने लिखा है, हमारे कंपियर साथी अपेक्षा शुक्ला और कैरल पांडे ने इस दिन आजकल में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सार्थक चर्चा प्रस्तुत की। साथ ही क्रम विज्ञान मंच में दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही। इसके बाद क्रम शाम गजल में कर्णप्रिय गजलें सुनाई गई, जो बेहद मनमोहक लगी। पूरा कार्यक्रम रोचक और जानकारी पूर्ण रहा। इस शानदार प्रस्तुति के लिए अपेक्षा शुक्ला, कैरल पांडे और सभी वार्ताकारों को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद कि आपने 15 जून की युवाणी कार्यक्रम को सुना और उसे सराहा। हमें खुशी है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। क्रम विज्ञान मंच की जानकारी और क्रम शाम गजल में प्रस्तुत गीत आपको ज्ञानवर्धक और मनमोहक लगे। इसके साथ ही आपका उत्साह हमें इसी तरह मिलता रहे। ऐसे ही हम आगे उपयोगी और रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा आपसे हमें मिलती रहेगी। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद। इस दिन के लिए हमें हज़्ज़ा नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू का भी पत्र प्राप्त हुआ है। साथियों, क्रम पत्र मिला यहीं तक, लेकिन जाने से क्रम पत्र मिला खत्म करने से पहले जान लेते हैं हमारा पता। क्रम पत्र मिला में पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है क्रम पत्र मिला युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर। हमारा पिन कोड है 492001। साथियों, इसी के साथ आप हमें पत्र के माध्यम से ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है airyout9@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप जब भी पत्र लिखें तो क्रम पत्र मिला के लिए सब्जेक्ट कोड में, सब्जेक्ट बॉक्स में सब्जेक्ट कोड Y1 लगाना ना भूलें। क्रम पत्र मिला यहीं तक।

0: दोस्तों, ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में जब भी दिल थोड़ा ठहरना चाहता है तो ये कदम सीधे बीते हुए कल की गलियों की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि बीता हुआ कल गुजरे हुए वक्त का वो पता है जो दिल को सुकून देता है। और यही सुकून हमें उस दौर के गानों में भी मिलता है जहां सुरों में सादगी थी और शब्दों में जज्बात।
1: चलिए अपनी यादों की डायरी से कुछ धूल हटाते हैं और सफ़र पर निकलते हैं उस दौर के जहाँ जिंदगी की भाग दौड़ से दूर मन सुकून से भर जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, शुरू करते हैं पुराने गानों से सजा आपका पसंदीदा क्रम यादें।
1: काजल, कहते हैं कि हम चाहे जितना छुपा लें लेकिन हमारी आंखें दिल का सारा हाल बयां कर देती हैं। आंखें दिल का आईना होती हैं। कभी कभी किसी की आंखों में वो मासूमियत होती है जो दिल चुरा लेती है, तो कभी कोई अपनी नशीली नजरों से हमारे होश ही उड़ा देता है।
0: दोस्तों सोचिए, आप किसी महफिल में बैठे हो और अचानक आपकी नजर

0: किसी की आंखों से ऐसे मिले कि आप खुद को ही भूल बैठे, दिल डगमगाने लगे और आपका संभलना मुश्किल हो जाए।
1: काजल, ऐसा जादू तो सिर्फ किसी की खूबसूरत आंखों में ही हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी अगर किसी की नज़रों के जादू में खोए हुए हैं तो दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए झूमने के लिए।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म द ट्रेन का ये खूबसूरत तराना, जिसे स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने, गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने।
1: और फरमाइश थी हमारे इन श्रोता साथियों की, धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक बलदाऊ यादव, खुशी प्रवीण साहू की, कबीर चौक शीतला मंदिर वार्ड एक से अहिवारा से डबल कुमार डब्बू धीवर जतीन हेमराज की, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद की, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत की। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कोई अजनबी मिलता है, पर उसके साथ धीरे धीरे ऐसा कनेक्शन होता है जैसे कि हम उसे सदियों से जानते हों।
0: हाँ रोशनी, कभी कभी तो एक मुलाकात में कोई इतना अपना लगने लगता है कि दिल भी कहता है कि हमारा पुराना नाता है।
1: बिल्कुल काजल, क्योंकि सच्चे रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते, वो तो दिल से जुड़े होते हैं।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आ गले लग जा से ये खूबसूरत तराना, जिसे स्वर से सजाया था सुषमा श्रेष्ठ ने। गीत था साहिर लुधियानवी का और संगीत था आरडी बर्मन का।
1: और फरमाइश थी हमारे इन श्रोता साथियों की, करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, देवेंद्र कुमार सोनवानी, हिमांशु सिंघलिया, आशीष कुमार टेमरे की, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू मोहनीश और अनुराग कश्यप की, सिर्री गातापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा बिंदेश्वरी नागेश्वरी साहू की, सिर्री गातापार से लावण्या साहू की, और डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये की।
0: दोस्तों, क्या आप लोगों ने किसी पोस्टकार्ड या अंतर्राष्ट्रीय खत लिखे हैं? नहीं ना, लिखेंगे भी कैसे, आज के दौर जो मोबाइल का है। मगर हमारे घर के बड़ों को वो दौर आज भी याद है, जब उन्हें किसी के खत का बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था और वो खत बहुत सोच समझ कर ही लिखा जाता था,
1: जब डाकिया सिर्फ एक चिट्ठी नहीं बल्कि किसी की धड़कने लेकर आता था।
0: तो चलिए आज घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और यादों के उसी पुराने बक्से को फिर से खोलते हैं और महसूस करते हैं उस जादुई एहसास को जो सिर्फ किसी खतों में ही होता था।

0: साथियों, अभी आपने सुना फिल्म शक्ति का ये खूबसूरत तराना, जिसे स्वर सजाया था लता मंगेशकर ने, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आरडी बर्मन का। और अभी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय खतों की हम बात कर रहे थे, तो अंतर्देशीय जो खत होते थे वो सुंदर से नीले कलर के खत, जिसे देखकर ऐसा मन को तसल्ली मिलती थी कि जो हमसे दूर इस देश के बाहर बैठा है उसका ख़त आया है और उनके विचार हमें सुनने को मिलते थे, पढ़ने को मिलते थे, वो जानकर बड़ा अच्छा लगता था ना रोशनी।
1: बिल्कुल सही कहा काजल तुमने। और इस गाने के लिए हम

0: हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश आई थी, शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर की, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा शारदा दामिनी वर्मा की, बाजारपारा बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा की, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता कमलकांत विजेंद्र कांत सारथी की, सिमगा से सविता जैन प्रदीप जैन की।
1: रोशनी, प्यार का असली मज़ा तो इसकी मीठी नोक झोंक में है ना?
0: बिल्कुल काजल, जहाँ एक तरफ कोई मुस्कुराकर हाल पूछे और दूसरी तरफ से नखरे भरा जवाब आए।
1: आज के डिजिटल दौर में भले ही हम अपनी बातें सीधे सीधे कह देते हैं, लेकिन उस दौर की बातें अलग ही थी, जब बातों ही बातों में एक दूसरे को हमें सताना होता था।
0: सही कहा काजल, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं।
1: बिल्कुल, इसी बात पर ना मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है रोशनी, तुम कहो तो सुनाओ।
0: अरे बिल्कुल सुनाओ काजल, ये भी कोई पूछने की बात है।
1: अर्ज किया है, नजरों से नजरों का इकरार होता है, बातों ही बातों में इजहार होता है। हम तो बस मुस्कुरा कर पूछेंगे आपसे कि बताइए हाल कैसा है जनाब का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, ये खूबसूरत नगमा जिसे स्वर से सजाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने, गीत थे मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत था आरडी बर्मन का।
1: और फरमाइश थी हमारे इन श्रोता साथियों की सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद, आदित्य, आशीष, प्रकाश सेन की, शिव मंदिर रोड खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, झरना, प्रेरणा, दीक्षा, शिक्षा अग्रवाल की, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, राहुल, सविता, स्वाति माखीजा की।
0: अभी जो गाना सुन रहे थे रोशनी, हाल कैसा है जनाब का? तो तुम अपना हाल भी बता दो मुझे।
1: काजल क्या हाल बताऊं, मौसम ने तो ऐसे चकमा दे रखा है। कल इतनी गर्मी थी, इतनी तेज धूप, और आज देखो सुबह से मौसम कितना सुहाना बना हुआ है।
0: हाँ, और इस मौसम ने हाल बेहाल कर रखा है।
1: बिल्कुल, हाल तो बेहाल हो गया क्योंकि ये बारिश जितनी होनी थी उतनी तो नहीं हुई। अभी भी इंतज़ार है उन प्यारी प्यारी रिमझिम बारिश का, जिसे महसूस कर दिल एकदम सुकून से भर जाए।
0: हाँ, और मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू जिसमें हम चाय पकौड़े की मज़े ले, और फिर वो जो बारिश का जो मज़ा है, जो असली मज़ा है, वो जो दिल को सुकून देता है ना, वो सुकून के बाद ना ऐसा लगता है वाह। और ये मौसम ऐसा भी है ना कि बारिश में हमें तबीयत भी बहुत खराब होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो अपनी सेहत का भी हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, तो चाय अदरक वाली ही पीना रोशनी।
1: बिल्कुल काजल, और बात तुमने की इस बारिश की, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बारिश जब शुरू ही होने वाली, तो क्यों ना हम कोई छोटा मोटा पेड़ पौधा लगाएं, कुछ पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले समय में उससे हमारा भविष्य सुधरे, पर्यावरण को फायदा हो और हमें भी फायदा हो।
0: बिल्कुल श्रोताओं, पेड़ लगाना बारिश के मौसम में सबसे आसान काम है। आप पेड़ लगाइए बारिश के मौसम में, प्रकृति ही उसका ख्याल रखेगी। ठंड में और गर्मी में सिर्फ आपको उन पौधों का ख्याल रखना है, ताकि वो जीवन भर आपका और आपके बच्चों का भी ख्याल रख सके। और दोस्तों, कभी कभी ना हम अपने से, अपने लोगों से काफ़ी दूर हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत पास है और उनकी कोई बात, कोई हंसी और बस उनकी चुप्पी से हमें याद आ जाती है। तो हम उनके नाम पे भी पेड़ लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और ये जो चुप्पी है ना, ये हमारे मन की आवाज़ होती है, जिससे सिर्फ हमारा दिल ही सुन सकता है।
0: कभी कभी ना किसी मोड़ पर ज़िंदगी थोड़ी सी रुक जाती है, और हम फिर सोचते हैं कि काश एक बात, वो बात कह दी होती, काश एक बार और मिल लिया होता उनसे।
1: लेकिन काजल, शायद ये यादें, इनका यही काम है कि ये अधूरी रह जाएं, ताकि जब भी हम अकेले हो तो उन यादों को याद करके उसे पूरा कर सकें।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों खुद से एक बार फिर मिलते हैं एक धुन के साथ, एक खामोश बात के साथ, क्योंकि वक्त जो है वो फिसलता जाता है, लेकिन हमें छोड़कर उस वक्त को जाने का मन नहीं होता। लेकिन वक्त तो वक्त है, वक्त के साथ हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम दोनों का ये खूबसूरत सा नगमा, जिसे स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने, गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत था जयदेव का।
1: और फरमाइश थी हमारे इन श्रोता साथियों की फुलझर घटारानी से योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी यामिनी कोकिला साहू की, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय इंद्रानी माया साहू की।
0: श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी होगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे संस्कृति के महक और माटी के गीत। इसी के साथ मुझे यानी काजल साहू
1: और मुझे यानी अपनी दोस्त रोशनी पांडे को दीजिए इजाजत और स्वीकारे हमारा नमस्कार।

0: युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके

0: में श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन

उन पर लगाकर आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित,
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: हाँ, कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। हम
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। भारतीय रेल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबा चांपा कोरबा तीसर रेल लाइन परियोजना ला देहे मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री है खरीफ सीजन पर कमती वर्षा वाले जिला में तैयारी पूरा करे के दिन निर्देश। और कोरिया जिला के नवगाई गांव में रेत खनन ला लेके हुए विवाद में भाजपा नेता के मौत हो गए, उन्हें 3 आने घायल हैं। अब समाचार विस्तार ले। भारतीय रेल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबा चांपा कोरबा तीसर रेल लाइन परियोजना ला करीबन 755 करोड़ रुपया के अनुमानित लागत ला मंजूरी दे हैं। ये परियोजना मा चांपा और कोरबा के बीच तीसर रेल लाइन बनाई जाही, जेमा पहली ले मंजूर मड़वारानी सरक बुंदिया खंड ला शामिल नहीं करे गए है। ये रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 मीट्रिक टन और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनी, जेखर उद्देश्य माल ढुलाई ला मजबूत करना।

और देश के बढ़त ऊर्जा जरूरत ला पूरा करे मा मदद करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह चापा कोरबा तीसर रेल लाइन परियोजना ला मंजूरी दे जाए मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बर आभार जतन है। उमन किहिन की ये परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास और औद्योगिक बढ़वार देश के ऊर्जा सुरक्षा ला मजबूत बनाए के दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हरे। श्री साय कहिन की चापा कोरबा रेलखंड SECL और MCL के खदान ला राष्ट्रीय रेल नेटवर्क ले जोड़िया एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये परियोजना के पूरा होए ले कोयला लाने लेगे के क्षमता में बढ़वार होही। मुख्यमंत्री कहिन की बने रेल संपर्क ले उद्योग ला मजबूती मिलही, व्यापार के बढ़वार के संग रोजगार के नवा मौका मिलही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है काली नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि बैठक में खरीफ सीजन पर देश भर में करेंगे तैयारी के समीक्षा करीन। बैठक में श्री चौहान है कमती वर्षा वाले जिला पर पहली ले योजना ला तैयार करे में जोर दीन। बैठक में ये बात में ध्यान केंद्रित करेगी कि फसल के मौसम के दौरान पैदा होवैया प्रतिकूल मौसम स्थिति ले किसानी और किसान के सुरक्षा पर सबो जरूरी कदम पहली ले उठाए जाए। उमन किहिन की जौन जिला में कमती वर्षा या फिर असमान वर्षा के संभावना हवे वहाँ बेरा रहत तैयारी होना चाहिए। अवैया 21 जून के मनाए जाने वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ल लेके छत्तीसगढ़ में तैयारी आखिरी चरण में हवे। सामान्य प्रशासन विभाग कोती ले जिला मुख्यालय में होवैया सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पर माई पहुना के नाव तय कर दे गए है। राज्यपाल रमेंडे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में माई पहुना हुई। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आतिथ्य में सरगुजा जिला में बिहनिया 7 बजे सामूहिक योग करे जाही। ये कार्यक्रम के अगुवाई मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करही। एक संगे संग केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुरुक, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में राखे गए कार्यक्रम में माई पहुना रही। इसने आने जिला में होवैया योग कार्यक्रम में मंत्री सांसद और विधायक अतिथि के रूप में संग रही। ऐसो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम हरे स्वस्थ आयु के लिए योग ये राखे गए है। कोरिया जिला के नौगाई गांव में रेत खनन लेके हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह के मौत हो गई। उन्हें 3 आने घायल हो गए हैं। खबर के मुताबिक भाजपा नेता अपन कुछ एक संगी मनसंग पाछू रथिया सोनहत गे रहीन। यही दौरान नौगाई गांव में कुछ एक लोगन मन उखर गाड़ी ला रोक के तोड़ फोड़ करत आगे लगा दीन। ये दौरान भाजपा नेता गाड़ी ले निकल नहीं पाइन और जल के उखर मौत हो गई। ये घटना में 3 आने मनखे घायल हुए हैं जो अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए है। पुलिस ये मामला में 9 जिन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करे है जिनमें 4 जिन आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए है। पुलिस आने आरोपी मन के तलाश करत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपीला राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में IG नियुक्त करे है। सुंदर राजपी पाछू करीबन 8 बछर ले बस्तर में पदस्थ रहे हैं। ओमन कतको नक्सल विरोधी अभियान के अगुवाई करीन है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। और अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कोती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ह अवैया नीट परीक्षा ला देखत विद्यार्थी और परिवार वाले मन ला गड़बड़ी करैया मन ले सतर्क रहे के अनुरोध करीन है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह कहिन कि हम ये सुनिश्चित करबो कि परीक्षा बिना कोनो गड़बड़ी के पूरा होवे। खबर के मुताबिक 21 जून के तय नीट UG के पुनर्परीक्षा ला देखत सरकार ह 22 जून तक टेलीग्राम ऐप मा ऑनलाइन संदेश भेजे मा रोक लगा दे है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल है राज्य में अवैध रूप ले स्क्रैप और ओमा बौरे बैटरी के संग्रहण भंडारण परिवहन पुनर्चक्रण और व्यापार में जुड़े मनखे और संस्था के खिलाफ कार्रवाई के चेतावनी दे है। मंडल के संज्ञान में आए हैं कि राज्य के कुछ एक क्षेत्र में बिना पंजीयन स्क्रैप बैटरी के खरीदी बिक्री करे जाते। मंडल है स्पष्ट करे है कि ऐसन किस्म के काम पर्यावरण कानून के उल्लंघन है और लोगन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा करते। राज्यपाल रमेंडे का है रायपुर के कमल विहार के गजराज बांध ला जलाशय के रूप में विकसित करे के पहल करीन है। ये बांध करीबन 230 एकड़ क्षेत्र में फैले है। इस संबंध

0: राज्यपाल ह आज लोकभवन म रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे और अतिरिक्त कमिश्नर विनोद पांडे ले गोट बात करीन। राज्यपाल ह कहिन कि गजराज बांधला पेयजल भंडार के रूप में बनाए ले रायपुर शहर ला शुद्ध और पर्याप्त पानी मिलही। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप के बीच डुअल ज्वाइंट डिग्री समझौता में दस्तखत करे गए है। ये समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 ले 16 जून के बीच रखे गए भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान हुई। ये समझौता ले दोनों संस्थान के विद्यार्थी मल्ला एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रम ले भारत और फ्रांस में अध्ययन के मौका मिली। छात्र IIT भिलाई और इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप दोनों कोतिले मान्यता मिले डिग्री ले सकी। बिजली के दर में करेगे बढ़वार के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश के सबो जिला में बिजली विभाग के घेराव करीन। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन रायपुर के डगनिया के विद्युत विभाग कार्यालय के घेराव करके बिजली के दर में हुए बढ़वार, बढ़त महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के कीमत में बढ़वार ल लेके सरकार के खिलाफ नाराबाजी करीन। जांजगीर में कार्यकर्ता मन रैली निकालीन, उन्हें बिलासपुर में बिजली विभाग के घेराव करीन। ये दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमा झटकी घलो हुई। कांग्रेसकारी 18 जून के सबो जिला में पत्रकार वार्ता राख के बिजली के दाम में करेगे बढ़वार के विरोध करही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश कोतिले 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास करके रिकॉर्ड बनैया चारू पांडे ले लेगे भेंटवार्ता के प्रसारण काली 18 जून के करे जाही। एकर प्रसारण रतिहा 8:15 ले 8:30 तक सुने जा सकत है। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। जसपुर जिला में बीज गोला बनाबो, जसपुर के जंगल ला बढ़ाबो महाअभियान के शुरुआत करे जाते। एमा काली 18 जून के जिला के भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी समेत चिन्हा करेगे जगह मा एके दिन मा करीबन 2,00,000 सीड बॉल तैयार करे के लक्ष्य रखे गए है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। भारतीय रेल है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबा चांपा कोरबा तीसर रेल लाइन परियोजना ला देहे मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री है खरीफ सीजन पर कमती वर्षा वाले जिला में तैयारी पूरा करे के दिन निर्देश। और कोरिया जिला के नौगाई गांव में रेत खनन ला लेके हुए विवाद में भाजपा नेता के मौत हो गए, उन्हें 3 आने घायल है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 6:20 होने को है संस्कृत में समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब सुनते हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत। आवाज है अलका याग्निक की और रचना है समीर की।

0: बस ऐसे समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब सुनते हैं फिल्म हे बेबी का ये गीत। आवाज है लॉय मेंडोसा, नीरज श्रीधर, परवेज कादरी की।
4: ए ऊ आ ए ऊ आ ए ऊ आ।

0: अभी आपने सुना फिल्म दिलबर का ये गीत, आवाज़ थी अलका याग्निक और विनोद राठौर की। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत का अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करती। फिर खाए पिए के मामले में एक ठन फार्मूला

0: ये आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंग्स लीड्स में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं।

0: उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेल ने चापा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। कोरिया जिले में रेत खनन विवाद को लेकर हुए हमले में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया प्रदर्शन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में होंगे सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 42 किलोमीटर लंबी चापा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत चापा और कोरबा के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी सड़क बूंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। ये रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 मीट्रिक टन और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनेगा, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को दृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चापा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास, औद्योगिक प्रगति और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोरिया जिले के नौगई गांव में रेत खनन को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता अपने कुछ साथियों के साथ बीती रात सोनहत गए थे। इसी दौरान नौगई गांव में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। इस दौरान भाजपा नेता गाड़ी से निकल नहीं पाए और जलकर उनकी मौत हो गई। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे 3 व्यक्तियों को अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की मौत रायपुर लाते समय हुई है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान शिवनंदनपुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री का

0: वितरण भी किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। गौरतलब है कि 21 जून को निर्धारित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। इधर नीट परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज रायपुर, दुर्ग सहित विभिन्न जिलों में कलेक्टरों ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने रायपुर के डगनिया स्थित विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव कर बिजली की दरों में की गई वृद्धि, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जांजगीर में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बिजली दफ्तर के मुख्य गेट पर नारेबाजी की। वहीं बिलासपुर में भी बिजली दफ्तर का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथियों के नाम तय कर दिए गए हैं। राज्यपाल रमन डे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। राज्यपाल रमन डेका ने रायपुर के कमल विहार स्थित गजराज बांध को जलाशय के रूप में विकसित करने की पहल की है। ये बांध लगभग 230 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस संबंध में राज्यपाल ने आज लोकभवन में रायपुर नगर निगम के महापौर मीनल चौबे और अतिरिक्त कमिश्नर विनोद पांडे से चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि गजराज बांध को पेयजल भंडार के रूप में विकसित करने से रायपुर शहर को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने महापौर से संबंधित विभाग के अधिकारियों साथ समन्वय कर इस दिशा में कार्य करने को कहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप के बीच डुअल ज्वाइंट डिग्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून के बीच आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान हुआ। डुअल ज्वाइंट डिग्री समझौते के तहत दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और फ्रांस में अध्ययन का अवसर मिलेगा। छात्र IIT भिलाई तथा इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियां अर्जित कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में IG नियुक्त किया है। सुंदरराज पी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे हैं। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2 लाख सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग ने सभी नागरिकों, प्रबुद्धजनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19

0: शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण कल 18 जून को किया जाएगा। इस विशेष भेंटवार्ता को रात 8:15 से 8:30 तक सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। सड़कों पर मवेशी छोड़ने की बढ़ती समस्या को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि सड़क, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विचरण करते पाए जाने वाले गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं को स्थायी रूप से जब्त किया जाएगा। जिला प्रशासन ने पशुपालकों, डेयरी संचालकों और किसानों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को घर या निर्धारित स्थान पर ही रखें और सड़कों पर ना छोड़ें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा कल 18 जून को सुबह 11 बजे दुर्ग जिला मुख्यालय स्थित बाल गृह परिसर में महिलाओं के मामलों के निराकरण के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के उरकुरा रायपुर डाउनलाइन पर खमतराई स्थित संपार फाटक आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण आज सुबह से लेकर 19 जून की रात 10 बजे तक बंद रहेगा। जांजगीर चांपा जिले के बिरकोनी गांव में एक युवक ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। नारायणपुर जिले में बीएसएफ की टीम ने विशेष सर्च अभियान के दौरान मसपुर गुडरापाल के जंगल में माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इनमें बीजीएल लॉन्चर और राइफल शामिल है। और जांजगीर में राइस मिल से धान की चोरी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। कोरिया जिले में रेत खनन विवाद को लेकर हुए हमले में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया प्रदर्शन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में होंगे सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेनिंगले लीड्स में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्रिप कमेंट्री अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
5: पहले बल्लेबाजी
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामले में एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा, चावर, तेल, दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल, नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर
3: हिट। खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रस्तुत कार्यक्रम जय

की सुरक्षा कवच देश का संबल तीनों भारतीय सेनाएं तिरंगा विश्व पटल और गगन पर तीनों भारतीय सेनाएं

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: நிலைமைக்கு கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं बंधन फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज में. बोल लिखे हैं देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का.

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: देव दर्शन थू
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
0: देव दर्शन थू।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है
3: और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
4: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
5: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
4: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
5: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
3: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
4: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की बोल सुरेंद्र साथी के।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
3: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा, चाउर, तेल, दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल, नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
4: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर
5: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
2: जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तक्षक फिल्म के इस गीत के साथ ही जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती रिले, FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। इस संदेश के बाद
4: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल, सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
5: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल, सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
6: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
5: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल, सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
6: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
5: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं अंकिता द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का सबरंग में। तन्हाई यानी अकेलापन और एकांत और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन तब लगता है जब 100 लोगों के बीच बैठे हों, फोन में 500 कॉन्टैक्ट हैं, फिर भी दिल खाली। ये वो तन्हाई है जो चीखती है कोई तो समझो मुझे। इसे बचने के लिए हम कई इच्छाएं पाल लेते हैं, जैसे शोर और भीड़, और वहीं दूसरी तरफ एकांत। ये खुद के साथ होना है, कमरे में अकेले बैठे हो पर दिल भरा हुआ। ये वो तन्हाई है जो फुसफुसाती है, वाह मैं अपने साथ कितना सुकून में हूँ। इसी तन्हाई में इंसान खुद से मिलता है, इसी में बड़ी इच्छाएं मरती हैं और असल वाली पैदा होती हैं।

0: के मामला माँ एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान माँ तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल, सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती माँ सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: वहीं दूसरी तरफ तन्हाई और इच्छा का रिश्ता भी बिल्कुल अलग है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो तन्हाई लगती है, जब तन्हाई लगती है तो हम नई इच्छाएं बना लेते हैं, ये चक्र चलता रहता है। कई महान संत तन्हाई में गए थे लेकिन भीड़ से भागने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मिलने, लौटे तो सब खाली हाथ थे पर दिल भरा हुआ था। तन्हाई दो तरीकों से पहचानी जा सकती है, अगर बेचैनी है तो हम अकेलेपन में हैं, वहीं अगर सुकून मिले तो हम एकांत में हैं। अपनों के बीच रहते हुए भी ये लगना कि मुझे कोई नहीं समझता, ये इच्छा से नहीं उम्मीद से पैदा होने वाला भाव है। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमें वैसा समझे जैसा हम खुद को समझते हैं। तन्हाई का इलाज भीड़ नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके सामने बिना बोल बैठ जाओ तो भी लगे कि बात हो गई है, और जब तक ऐसा इंसान ना मिले तो स्वयं से दोस्ती कर लो। तन्हाई सजा नहीं बल्कि आईना है जो हमें स्वयं का बोध कराती है।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल?

0: सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती माँ सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: तन्हाई हमें सीख देती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन अपना है, हमें क्या चाहिए और मजबूत बनने का अवसर। तन्हाई के फायदे भी बहुत हैं। मन में नए विचारों का आना, असली दोस्तों की पहचान और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार। अक्सर हमने जब भी सफल व्यक्तियों की कहानी सुनी होगी तो अक्सर उनमें एक बात सामान्य सी रही है कि उन्होंने जब कठिन मेहनत की तो समाज और परिवार से स्वयं को कुछ समय के लिए अलग कर लिया, ताकि स्वयं बोध के साथ सफलता हासिल की जा सके। इसलिए तन्हाई कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। और इसी गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त अंकिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग, एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:26 हुए हैं, हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार मयूर पुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।
1: पैतालीस मिनट होने को है समाचार संध्या। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
2: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में

0: कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली

0: में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने

0: 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
2: Excellency, hum jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sevaen de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai. Mujhe pura vishwas hai ki samjhote mein seafarer ki suraksha bhi sunishchit hogi aur usko prathmikta milegi. Excellency, main phir ek baar पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती रिले, FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, मैं अंकिता द्विवेदी स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। आइए आज हम बात करते हैं फिल्म आयशा की, जो कि एक लोकप्रिय बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म जेन ऑस्टिन के 1815 के प्रसिद्ध उपन्यास एम्मा पर आधारित है। फिल्म की कहानी दिल्ली की रहने वाली एक अमीर और बिंदास लड़की आयशा यानी सोनम कपूर की है। आयशा को लोगों की जिंदगियों में मैच मेकर बनने और जोड़ियां बनाने का बहुत शौक है। वो अपने इसी आदत के कारण अक्सर खुद को और अपने दोस्तों को मुश्किल में डाल देती है।

आयशा अपनी मैच मेकिंग खूबी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सादगी पसंद सहेली शेफाली यानी अमृता पुरी की शादी एक अमीर रईस लड़के से कराने की कोशिश करती है। वो शेफाली को पूरी तरह से एक मॉडर्न लड़की में बदल देती है। इस बीच आयशा का एक घमंडी दोस्त अमित यानी अरुणोदय सिंह और उसकी सहेली पिंकी यानी ईरा दुबे भी इस ग्रुप का हिस्सा होते हैं। आयशा शेफाली के लिए रणधीर यानी साइरस को पसंद करती है, लेकिन बात कुछ और ही हो जाती है और कहानी में उलझने पैदा हो जाती हैं।

वहीं दूसरी तरफ आयशा का पड़ोसी और दोस्त अर्जुन बर्मन यानी अभय देओल एक सुलझा हुआ समझदार व्यक्ति है। वो हमेशा आयशा को दूसरों के जिंदगी में दखल देने से रोकता है। आयशा और अर्जुन के बीच में हमेशा नोकझोंक और मीठी बहस चलती रहती है। अर्जुन कई बार आयशा को तसल्ली से समझाता भी है कि जो उसे अच्छा लगता है जरूरी नहीं सामने वाले को भी वही चीज पसंद आए। इसी बात पर अर्जुन और आयशा की काफी बहस होती है।

एक समय ऐसा आता है जब आयशा के सारे दोस्त एक एक कर उसका साथ छोड़ देते हैं। दूसरों की जिंदगी में जोड़ियां बनाते बनाते आयशा के अपने रिश्ते खराब होने लगते हैं। वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। फिर घटनाओं के एक मोड़ के बाद आयशा को ये एहसास होता है कि सपने की सबकी अपनी निजी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से प्यार पाने का हक है। प्यार दिल से होता है, किसी के बोलने या कहने से नहीं।

फिल्म की कहानी के अंत में आयशा अपने बर्ताव के लिए सभी से माफी मांगती है और साथ ही अपने पड़ोसी अर्जुन से अपने प्यार का इजहार करती है और इस तरह फिल्म आयशा की कहानी का सुखद अंत होता है। इससे हमें भी एक सीख मिलती है कि सबको अपने हिसाब से जीवन जीने और प्यार करने का हक है। तो आज एक ही फिल्म से मैं बस इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अंकिता को इजाजत इसी गीत के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती रिले।
1: प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर
2: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?
4: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी बेचैनी उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ढलती जाए रात।
1: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईएमयू में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
3: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
2: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
4: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
2: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन

125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Verma picked up 3 wickets and Nandini Sharma claimed 2. Batting India first posted a formidable 209 for 5 in their allotted 20 overs, powered by Smriti Mandhana in 74 and Shefali Verma by 55. In cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series in Lucknow to take an inaccessible 2-0 lead. And that's the end of the news bulletin.
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:10 हुए हैं, हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।